0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the
2: Musty. A very good morning. आप सभी को सुप्रभात. आज शनिवार 27 जून 2026 की सुबह है और अभी आप घर में आते चलिए ठीक 5 बजे है.
3: Chillax with Radio Musty.
0: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। सुबह की 5:06 हो रहे हैं और वीकेंड की सबसे खूबसूरत शुरुआत हो रही है सिर्फ रेडियो मस्ती पर। मैं हूँ आपके साथ, है आपकी रिया, और अगले 2 घंटे हम करेंगे बस एक ही काम, थोड़ा सा मुस्कुराना, थोड़ा सा गाना और जिंदगी को हल्का सा रिलैक्स बनाना। आज सैटरडे है, किसी के लिए छुट्टी का दिन, किसी के लिए काम का दिन, लेकिन हर किसी के लिए ज़रूरी है एक छोटा सा ब्रेक। ये अब हमेशा याद रखिए, बाहर अभी भी हल्का सा अंधेरा है। वैसे हम हल्का सा नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है कि विंटर मौसम में, सर्दी के मौसम में देर तक अंधेरा ही होता है, बट ये तो जीवन का सत्य है कि अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आपको दिखेगी और रोशनी दिख जाएगी थोड़ी देर में। सो ये सभी हवा में ठंडी सी ताजगी है और बस थोड़ी देर में सूरज भी आपको दिख जाएगा। तो एक गर्म चाय या कॉफ़ी का कप हाथ में लीजिए अगर आप उठ चुके हैं तो, और काम पर नहीं जाना है, आज घर पर ही रहना है, तब भी तो आप ये कर पाएंगे, वरना सुबह वाला रश भी होता है जहाँ पर आपको काम पर जाना होता है। बट इट्स सैटरडे, इसलिए थोड़ा सा समय यहाँ पर निकालिए एंड उतना रश करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और आराम से काम पर जाइए। It's gonna be a good day, बहुत ही खूबसूरत दिन होने वाला है, क्योंकि हम रिलैक्स में लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत गाने। And as you know, सदाबहार गाने the sour, so आप सभी के लिए हम ये गाने चलाते रहेंगे, तो हमारे साथ आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। It's a good वाली मॉर्निंग, तो इसे हम साथ में गुड बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल सैटरडे साथ में ओनली ऑन रेडियो मस्ती। आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294।
0: Chillax with Radio Mastee,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty. कभी सोचा है हम पूरा हफ्ता वीकेंड का इंतजार क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि ऑफिस या स्कूल से छुट्टी मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि वीकेंड हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है। आज किसी को फ़ोन कीजिए जिससे काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, मम्मी के साथ चाय पी लीजिए, पापा के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, या बस अपनी फेवरेट गाने सुनते हुए खिड़की के पास बैठकर सुबह को आप महसूस कीजिए। कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव दिन वो होता है जिस दिन हम अपने दिल को आराम देते हैं, और दिल को भी आराम देना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। और इस मूड के साथ चलिए सुनते हैं एक ऐसा गाना जो इस सैटरडे मॉर्निंग को और भी खूबसूरत बना दे। वेल, आई नो कि आपके मैसेजेस डेडिकेशन सब पेंडिंग है, तो हम थोड़ी देर में लेकर वापस जरूर लौट आएंगे।
1: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.
0: वेल, ये गाना देवानंद जी सुनना चाहते थे और आप इसे डेडिकेट करते हैं बबीता दर्शनी, कृष्ण नकुल, अर्शिया एंड रिया के नाम। वेरी हैप्पी सैटरडे आपको भी एंड ऑल आवर लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड है। किशोर दा की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके दिन को और भी खूबसूरत बना दे।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी, अभी समय हो जा रहा है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। घर या काम से जुड़ी कोई बात आपके पक्ष में जा सकती है। किसी अपने की सलाह का मन न रखिए और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में बदलना पड़ सकता है। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। परिवार के साथ बिताया हुआ समय खुशी देगा। पुरानी चिंता धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। किसी का भला करने का अवसर मिले तो जरूर आगे बढ़िए। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: नए विचार आज आपके काम आ सकते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी सोच के साथ कीजिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बात हो सकती है। छोटी बातों पर विवाद से बच के रहिए। शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने के योग है। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज अपने मन की बात सुनना फायदेमंद रहेगा। घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। किसी अपने के लिए समय निकालना जरूरी होगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आज की मुस्कान किसी और के चेहरे पर भी खुशी ला सकती है। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। किसी नए काम की योजना बन सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको बल देगा। दिन का

0: अंत संतोष के साथ होगा। लकी नंबर है आज आपका एक।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज हर काम सोच समझ कर करना उचित रहेगा। किसी की बात को बिना समझे गलत ना माने। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। अपनी कला या हुनर को दिखाने का अवसर मिल सकता है आपको। शाम सुकून भरी रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज संतुलन बना रखना ही सफलता की कुंजी होगा। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से मन हल्का होगा। किसी पुरानी याद से चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। नए लोगों से मिलते समय यह विनम्रता बनाए रखिए। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज मेहनत का फल मिलने की संभावना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी अपने का सहयोग हौसला बढ़ाएगा। बिना वजह चिंता करने से बच के रहिए। दिन के अंत तक मन में संतोष का भाव रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज का दिन नई ऊर्जा लेकर आएगा। किसी यात्रा या मिलन की बात बन सकती है। बच्चों के साथ समय बिताना खुशी देगा। अपने शब्दों का ध्यान रखें। मधुर वाणी रिश्तों को और मजबूत बनाती है। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज जिम्मेदारियों को शांत मन से निभाएंगे तो हर काम आसान लगेगा। घर के किसी सदस्य की बात आपको नई दिशा दिखा सकती है। बचत पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। सेहत के प्रति लापरवाही ना करें। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है। अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखिए। दोस्तों के साथ हंसी मजाक का समय मिलेगा। किसी पुराने काम में अच्छी प्रगति होगी। दिन भर उत्साह बना रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज मन शांत और प्रसन्न रहेगा। किसी अपने से मिली प्रेरणा आपका हौसला बढ़ाएगी। घर में प्रेम और अपनापन बना रहेगा। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। आज का दिन सुंदर यादें देकर रह जा सकता है। लकी नंबर है आज आपका 7। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए तो रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
3: You're listening to Radio Masti.

0: Chillax with Radio Musty.
1: पांच बजकर 53 मिनट और हम अभी आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे. क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं और हमें पता है कि आप इंतजार करते हैं कि कब हम आपकी संदेश आपके अपनों तक पहुंचाएंगे. सो इट्स टाइम व्हाट्सएप की ओर हम पहले बढ़ते हैं और यहां पर देख रहे हैं कि हमारे साथ है. कौन है? बॉम्बू से धनेश्वर जी है, आपकी पत्नी है सुनीता, और साथ में रेखा, संजीव, निशा और हमारे लिए भी यानी कि मेरे लिए आप गाना रिक्वेस्ट करेंगे. ऑल राइट, दावे दोस्त परिवार के नाम एज वेल हम जरूर गाना डेडिकेट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज. और इसी के साथ हम आपको विश करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैटरडे. शनिवार आपका बहुत ही अच्छा जाए, बस हम यही आशा करते हैं. अब्दुल और सारा बानू जी हमारे साथ कनेक्टेड है. गुड मॉर्निंग आप दोनों को. अभी काम पर गए हैं या घर पर ही आज? क्योंकि हमें पता है आप अक्सर मैसेज करते हैं कि सवेरे सवेरे काम पर पहुंच जाते हैं. सो अगर आप काम पर हैं, आपको हम बुको हायर कहते हैं. एंड यस, यहाँ पर सरिता जी है गुड लेंथ से. हेलो सरिता जी, और गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड शुभ दिन सभी को आप विश करते हैं, आपको भी हम यही विश करते हैं. एंड यहाँ पर इमलता पंजन भजन हमारे साथ कनेक्टेड है. आप हैं पॉइंट ऑफ व्यू से और आप विश करते हैं सभी को वंडरफुल डे. आपको भी वंडरफुल डे, वंडरफुल सैटरडे. एक प्यारा सा गाना आप अपने पति के लिए, बच्चों के लिए और पूरे परिवार के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं. ऑलराइट, हम ज़रूर ज़रूर चलाएंगे नेक्स्ट ट्रैक उनके नाम. और यहाँ पर प्रेमिला जी हैं, आप हैं प्रिंदी पापाई से, और एक प्यारा सा गाना अपने पति रंजीत और पूरे परिवार के नाम डेडिकेट करती है. ऑलराइट, यहाँ पर हम ऑल्सो देख रहे हैं कि खुबलाल परिवार भी हमारे साथ कनेक्टेड है. ज्योति जी है शतुभनागर से, और गाना आप डेडिकेट करते हैं फो आशनी, रेखा, सुरेखा और माधव परिवार, और सो हमारे लिए. सो थैंक यू फॉर दिस लवली एंड स्वीट मैसेज. नेक्स्ट ट्रैक की ओर हम बढ़ते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल वन डेडिकेटेड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स.
0: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको करुणा जी।
1: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहस का समापन करते हुए कहा कि आज के लिए लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। वहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगयाना वोमांग ने कहा, ये कोई उपहार नहीं है बल्कि आने

0: वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया एक निवेश है। बजट के बाद दिए गए अपने भाषण के दौरान उन्होंने बजट में शामिल उपायों का बचाव किया। सार्वजनिक ऋण बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक ये 681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि जीडीपी का 87.8% होगा। मंत्रिपरिषद ने मेलरोज जेल में 9 दिसंबर को ऑजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। इस आयोग की पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश बल्कि इस आयोग की अध्यक्षता करने वाले पूर्व न्यायाधीश पुलाम शांगलिन ने की थी। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया और विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों तथा तटीय रडार चौकियों पर हमले किए। और अब मौसम की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। देश में अस्थिरता रहेगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे। पूर्व एवं ऊंचाइयों पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे। पूर्व तथा सेंट्रल पार्टों पर जहां तहां बारिश होगी। कभी कभार मूसलाधार बारिश के साथ बादल भी गरज सकते हैं। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में साथ में एवं दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों में भी न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 5:40 पर।
1: तो पूरा बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Chillax with Radio Masti,
4: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: A very good morning आप सभी को सुप्रभात। सुबह के 6:11 हो रहे हैं और रिलैक्स का दूसरा घंटा शुरू हो चुका है सिर्फ रेडियो मस्ती पर। मैं हूँ आपके साथ आपके रिया और अब समय है मूड में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का। अब तक सुबह की शांति के साथ हमने सुकून भरे गाने सुने और अब इस घंटे में मिलेंगे आपको मिक्स ट्रैक्स। वैसे द फर्स्ट आवर हम हमेशा सदाबहार गाने चलाते हैं एंड द सेकंड आवर थोड़े मिक्स गाने हो जाते हैं। आप ही के पसंदीदा गाने हैं यहाँ पर, कभी हल्की सी मस्ती, कभी प्यार का एहसास, कभी पुराने गीतों की महक और कभी नए सुरों की ताजगी। वीकेंड का मज़ा तो इसी में है, हर रंग को जीना, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा, बस दिल के हिसाब से। और अगर आप घर के काम शुरू कर चुके हैं, जी हाँ बहुत सारे लोग हैं जो सवेरे सवेरे मुँह अंधेरे ही घर के काम काज में लग जाते हैं। आई एम नॉट गोना से कि ये बुरी बात है, बट सुबह का मज़ा पहले आप लीजिए, चाय का कप हाथ में लीजिए, मज़ा लीजिए। या कहीं पर आप थोड़ा सा टहल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकल सकते हैं, बट डू समथिंग फॉर योरसेल्फ जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपकी सेहत को लाभ मिले एंड जिससे मन को भी लाभ मिले। हाँ, आजकल नहीं बट कब से शुरू हो जाना चाहिए था, मानसिक बल पर भी थोड़ा सा फोकस डालना चाहिए। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। सो हम आपके साथ कनेक्टेड है, आप भी हमारे साथ हम शो के कदम से कदम मिला रहे हैं एंड यहाँ पर तैयार हो जाए, मेक दिस सैटरडे और भी खूबसूरत इन ब्यूटीफुल है गानों के साथ। नॉट फॉरगेट आपके डेडिकेशन मैसेजेस 5499194।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: RM2 Radio Musty.
1: रेखा है हमारे साथ कनेक्टेड और ये गाना आपके नाम, आपकी बेटी अंश के नाम, आप है पोमो जी से और हमारे साथ कनेक्टेड।

भाई महेंद्र हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं पालमा से है। कैसे हैं आप? आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड अ वंडरफुल सैटरडे। We have a good time to all our lovely listeners जो हमारे साथ connected है।

सारी छह बज चुके हैं, पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहस का समापन करते हुए कहा कि आज के लिए लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। ये कोई उपहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया निवेश है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बजट में शामिल उन उपायों का बचाव किया जिनके तहत मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है। सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेप्ट बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक

681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि जीडीपी का 87.8 प्रतिशत होगा। सरकार का लक्ष्य इस अनुपात को 2027 तक 85.5 प्रतिशत और 2029 तक 80 प्रतिशत से नीचे लाना है। मंत्रिपरिषद ने मेलगोज जेल में 9 दिसंबर को ओजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों एवं लापरवाहियों को उजागर किया गया। विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों तथा तटीय रेडर चौकियों पर हमले किए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। अन्य रोमांचक मैचों में स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात दी, जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

0: और अब समाचार विस्तार से। जैसे कि सुर्खियों में हमने बताया, प्रधानमंत्री ने कल बजट पर बहसों का समाहार किया। उन्होंने कहा कि आज लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि वो चिंताओं और आशंकाओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मॉरिशस के सामने दो विकल्प हैं, या तो अभी नियंत्रित और आवश्यक सुधार लागू किए जाएं, या फिर भविष्य में गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़े। ये कोई उपहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया एक निवेश है। कल संसद में बजट के दौरान अपने भाषण में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री ने बजट में शामिल उन उपायों का बचाव किया जिनके तहत मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है। इसमें 6 महीने का पूर्ण वेतन सहित छुट्टियां और 6 महीने का वैकल्पिक आधे वेतन वाली छुट्टियां शामिल हैं। साथ ही पैटर्निटी लीव को बढ़ाकर 6 सप्ताह किया गया है और हर महीने एक दिन का मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल लीव भी शुरू किया गया है। उन्होंने उन आलोचनाओं का भी जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि इन प्रावधानों के कारण महिलाओं की भर्ती प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के भेदभाव को सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनको सुनते हैं, विवरण अदिति गनावा अवतार का है।
1: Certains ont argué que des employeurs pourraient être tentés de voir dans ces mesures une raison de moins recruter des femmes.
2: उप प्रधानमंत्री आर्या नावामारी कहती हैं कुछ लोगों ने बहस की कि इस कानून में कुछ कारोबार मालिक महिलाओं को नौकरी पर न रखने का एक कारण देखेंगे, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद हैं। इनमें नौकरी पर हर तरह के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा भी शामिल है। ये कानूनी ढांचा पूरी तरह सक्रिय है, साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन भी भली भांति मौजूद है। एक एम्प्लॉयर कानूनन किसी महिला को मात्र मैटरनिटी लीव को ध्यान में रखकर नौकरी से अलग नहीं रख सकता। इस पर आयोग स्वयं एक जांच स्थापित कर सकता है। किसी भी कारोबार मालिक या उद्योग एम्प्लॉयर को इन सुरक्षा ढांचों का उल्लंघन करने के बारे में गंभीरता से गौर करना चाहिए।

उपप्रधान और लैंगिक समानता मंत्री ने बाल संरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने विशेष रूप से चाइल्ड एडॉप्शन बिल पर जोर दिया, जिसे उन्होंने एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार बताया। इस विधेयक का उद्देश्य एडॉप्शन से जुड़े कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और उन प्रक्रियाओं को सरल एवं तेज बनाना है।

0: हैं जिन्हें अक्सर बहुत लंबा और जटिल माना जाता है। इस विधेयक के तहत एक समर्पित अडॉप्शन अथॉरिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर लिया जाए तथा दत्तक ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे बच्चों की देखभाल और पुनर्वास व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। एक बार फिर से उनके विवरण अदिति गनवा अवतार के साथ।
1: इस बजट में एक नए चाइल्ड अडॉप्शन बिल का प्रावधान है। ये एक वृहद सुधार है जिसका इंतजार बहुत समय से विभिन्न सरकारों और बाल सुरक्षा संगठनों द्वारा किया जा रहा था। ये नया कानून स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय अडॉप्शन के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। इससे एक अडॉप्शन अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी जो औपचारिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अवधि कम करने में मदद देगी। इस कानून के तहत बच्चे के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा इस बजट में फॉस्टर केयर विभाग को ज्यादा मजबूत बनाने का भी प्रावधान है। फॉस्टर फैमिलीज के यहाँ बच्चों को भेजने से जुड़े नियमों पर फिर से गौर किया जाएगा ताकि उम्मीदवार भेजने वाले परिवारों का मूल्यांकन आसान हो और योग्य फॉस्टर फैमिलीज के लिए एक उचित नेटवर्क कायम किया जा सके।
0: और जैसा कि शुरुआत में हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सभा में बजट पर बहसों का समाहार किया। इस दौरान उनका ये कहना रहा, आज लिए गए फैसले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों को लेकर वरिष्ठ नागरिकों की चिंता को समझते हैं, लेकिन उनके अनुसार देश के सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प है, या तो अभी नियंत्रित और सुविचारित सुधार किए जाए या फिर निकट भविष्य में एक गंभीर संकट का सामना करना पड़े। उनको सुनते हैं।
2: Let me speak directly to our elderly citizens. I know that the pension is not just a line in the budget. We all know. It is not just a monthly payment. It is security. It is dignity. It is recognition. I understand the anxiety that was expressed. There were a lot of misinformation as well. And in a democracy, Madam Speaker, when people speak, they are worried. A responsible government must listen. We took the concerns seriously and we decided to discard the means test because of that. But listening doesn't mean abandoning the truth. Listening doesn't mean pretending that the problem has actually disappeared. It hasn't. The problem remains. The demographic pressure remains. The fiscal pressure remains. The need for reform remains. This is our responsibility. The real choice before the country is not between reform and comfort. That choice does not exist. The real choice is between a controlled reform today or a brutal crisis tomorrow.
0: डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी याद दिलाया कि जिस संकट का खतरा आज देश पर मंडरा रहा है उसकी जड़ें पूर्व सरकार के फैसलों में हैं। उनके अनुसार 2019 के चुनावों के बाद वृद्धावस्था पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये किया गया, जबकि कई रिपोर्टें पहले ही चेतावनी दे चुकी थीं कि ये कदम लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होगा। इस बढ़ोतरी को वित्त पोषित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री की सरकार ने सामाजिक योगदान कर यानी कि सीएजी लागू किया था। प्रधानमंत्री का दावा है कि इस राशि का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुसार नहीं किया गया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
2: They knew, they had reports upon reports, I will quote Pravin Jagnauth in a minute. They knew that the pension system was already unsustainable. They put the country at risk, they put the elderly at risk, they couldn't give a damn, they need to win the election. And in its 2020 budget, they discontinued the contributory pension under the National Pension Fund and introduced the CSG, which is a tax. And worse, Madam Speaker, most of the funds raised under the CSG has in fact been siphoned off and diverted to finance expenditure, but not pensions. This is what they did with the money of workers, of people who have worked all these lives. These people

0: खबरों में आगे सार्वजनिक ऋण बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक ये 681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि जीडीपी का 87.8% होगा। एक वर्ष पहले के 88.5% की तुलना में थोड़ा कम है। सरकार का लक्ष्य इस अनुपात यानी कि रेशियो को 2027 तक 85.5% और 2029 तक 80% से नीचे लाना है। इस दिशा को सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन इसकी सफलता आर्थिक विकास सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन और अभी भी अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। मॉरिशस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव दृष्टि सिंह रामडेनी के अनुसार सार्वजनिक कर्ज में ये कमी निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि उनका मानना है कि आर्थिक पुनरुद्धार से जुड़े उपायों को तेजी से लागू करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी पर कर यानी कि शुगर टैक्स और समानांतर आयात पैरेलल इंपोर्टेशन जैसे कुछ मुद्दों पर सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संवाद जारी रहना चाहिए ताकि व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। दृष्टि सिंह रामडेनी को सुनते हैं, जिनसे बात की शैली न्यबन्य विवरण अदिति गनावा अवतार का है।
1: एमसीसीआई के महासचिव दृष्टि सिंह रामडेनी कहते हैं, निजी सेक्टर के स्तर पर जब वृद्धि की बात होती है तो उसका सीधा संकेत निर्यात सेक्टर की तरफ होता है तथा साथ ही वितरण सेक्टर पर ध्यान दिया जाता है, जो बास्केट ऑफ पेमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देता है और जो असल में निवेश के लिए भी एक प्रमुख चालक है, क्योंकि बिक्री इन्हीं संस्थानों के जरिए होती है। लेकिन अब कई अन्य नए सेक्टर हैं जिन्हें पब्लिक प्राइवेट साझेदारी की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि, जिसमें काफी बड़ी संभावनाएं पाई जाती हैं। लेकिन इससे जुड़े नेटवर्क और आवश्यक टेक्नोलॉजी तथा जरूरी निवेश स्थापित करने के लिए निजी सेक्टर के योगदान की आवश्यकता होगी, ताकि ऐसा करते हुए सार्वजनिक ऋण पर और ज्यादा दबाव न पड़े। इससे इस महत्वाकांक्षी प्रयास को जरूरी समर्थन मिलेगा।
0: अर्थशास्त्री मनीषा दुखोनी का कहना है कि जीडीपी के अनुपात में सार्वजनिक ऋण में 0.7% अंक की कमी ये दर्शाती है कि सरकार ने राजकोषीय संतुलन यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की दिशा में वास्तविक प्रयास किए हैं। हालांकि उनका मानना है कि चूंकि सार्वजनिक कर्ज अभी भी जीडीपी के 80% से ज्यादा है, आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3% रहने की उम्मीद है और ब्याज दरें अभी भी ऊंची हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बजट की एक प्रमुख योजना फिलहाल स्थगित होने के कारण कुछ अनुमान आगे चलकर बदल सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव ऊर्जा और आयात की लागत बढ़ा सकता है, लेकिन यदि सरकार द्वारा घोषित सुधार जैसे कि स्टार्टअप एक्ट, AI, विशेष औद्योगिक क्षेत्र और ऊर्जा संक्रमण एनर्जी ट्रांजिशन सफलतापूर्वक लागू किए जाते हैं तो वे दीर्घकाल में आर्थिक विकास को मजबूत कर सकते हैं और अंततः सार्वजनिक कर्ज का बोझ कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। मनीषा दुखोनी को सुनते हैं, जिनसे बात की शैली निर्बन्य विवरण अदिति गनवा अवतार का।
1: अर्थशास्त्री मनीषा दुखोनी कहती हैं, वृद्धि से आय जरूर बढ़ती है, लेकिन इसके साथ घाटा भी जुड़ा होता है, जिसका अनुभव हम अभी कर रहे हैं। देश का खर्च आज उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा है। एक तरफ हम अपने उपभोग का ज्यादातर भाग आयात करते हैं तो दूसरी तरफ हम पर्यटन और वित्तीय सेक्टरों पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। पर्यटन सेक्टर के लिए भारी आयात होता है तो इससे करंट डेफिसिट कम होता जा रहा है। इससे दुर्भाग्यवश मॉरिशन रुपए का भाव कम हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ निर्यात को लेकर भी हमारी वृद्धि ज्यादा नहीं है, जिससे भी रुपए का भाव गिर रहा है और साथ ही हमारा विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है।
0: ये बजट आर्थिक परिवर्तन पर भी विशेष जोर

0: देता है खासकर स्टार्टअप्स, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि SMEs और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के माध्यम से। आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस भी मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में छोटे व मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। और यदि इस बजट की प्रमुख घोषणाओं पर नज़र डालें तो सरकार ऐसे क्षेत्र को नई गति देना चाहती है जिसे वो देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ मानती हैं। जेनी येलापा, अदिति गनावावतार।
1: बजट 2026-2027 में देश के आर्थिक बदलाव की रणनीति में छोटे और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी गई है। इसका मकसद ऐसी नई पीढ़ी की इनोवेटिव और कम्पेटिटिव कंपनियों को बढ़ावा देना है जो नौकरियां पैदा कर सकें और विकास को आगे बढ़ा सकें। मुख्य उपायों में सरकार ने एक स्टार्टअप रिवोल्यूशन की घोषणा की है। ये पहल कई स्तंभों पर आधारित है जिसमें एक स्टार्टअप एक्ट की स्थापना, एक पब्लिक प्राइवेट स्टार्टअप काउंसिल का गठन और कुछ दो के भावी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक खास हब बनाना शामिल है। नई कंपनियों के विकास में मदद के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संचालित एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर स्कीम की भी योजना है। टैक्स के मामले में स्टार्टअप को एक बड़ा फायदा मिलेगा। कामकाज शुरू होने के समय से 10 साल तक इनकम टैक्स से उन्हें छूट दी जाएगी। अन्य मुख्य उपायों में एक डिजिटल पेटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों के अनुरूप स्टार्टअप के लिए एक खास ऑपरेशनल फ्रेमवर्क तैयार करना शामिल है। SMEs को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। बजट में एक खास SME बिल शामिल है जिसका मकसद कारोबार के माहौल को आसान बनाना और कंपेटिटिवनेस बढ़ाना है। जानकारी आसानी से मिल सके इसके लिए एक डिजिटल सिंगल विंडो बनाई जाएगी जो मदद, ग्रांट और फाइनेंसिंग स्कीमों को एक साथ लाएगी। इसके अलावा रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले SMEs के लिए गाड़ियों पर कुछ ड्यूटी फ्री बढ़ाई जाएगी। आखिर में महिला कारोबार मालिकों के लिए खास मदद की घोषणा की गई है जिसके तहत कई मिलियन रुपए की फंडिंग से एक खास इंक्यूबेटर बनाया जाएगा। इन उपायों के जरिए सरकार मॉरिशस को एक क्षेत्रीय इनोवेशन हब के तौर पर स्थापित करना चाहती है और साथ ही SMEs के योगदान को मजबूत करना चाहती है जो पहले से ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: मंत्रिपरिषद ने मेलगोज जेल में 9 दिसंबर को ऑजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर कमियों और लापरवाहियों को उजागर किया गया है। सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार एक खास समिति का गठन करेगी जो आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। विस्तार।
2: कैबिनेट ने मेलगोज जेल में 9 दिसंबर 2025 को कैदी ऑजी सेल्मो की मौत की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व पुणे जज पुलाम शांगलिन की अध्यक्षता में इस आयोग ने जेल व्यवस्था में कई गंभीर खामियों की ओर इशारा किया। इनमें कर्मचारियों की कमी, मादक पदार्थों की तस्करी, कथित भ्रष्टाचार, चिकित्सा सेवाओं की कमजोर व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कमियां शामिल हैं। आयोग ने जेल प्रशासन में व्यापक सुधार, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करने, भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्त नियंत्रण, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तथा स्वतंत्र शिकायत और निगरानी प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गृह मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।
0: और अब चलिए सुनते हैं मंत्रिपरिषद में लिए गए अन्य फैसलों का ब्यौरा अगली रिपोर्ट में।
2: कैबिनेट ने राष्ट्रीय सभा में क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार बलात्कार के मामलों में आरोपी ये दलील नहीं दे सकेगा कि घटना के समय वो पीड़िता का पति था, चाहे विवाह सिविल हो या धार्मिक। इसके अलावा घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अधिक

कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट 2026 और उससे संबंधित नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसके तहत सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर के लिए आवेदन डीपीपी के पास किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी जानकारी दी कि यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 जो 1 जुलाई को लगाया जाने वाला था अब 6 से 9 दिसंबर 2026 तक मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने जायजा लिया कि 23 जून 2026 को सऊदी अरब की मंत्रिपरिषद ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस्लामी मामलों दावत एवं मार्गदर्शन मंत्री या उनके प्रतिनिधि को मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के साथ मस्जिदों के सहयोग संबंधी एक एमओयू पर चर्चा और हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब में मॉरिशस के राजदूत और सऊदी अरब के इस्लामी मामलों दावत और मार्गदर्शन मंत्रालय के बीच बातचीत जारी है। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी जुलाई 2026 में 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सह मेजबानी करेगी। इनका उद्देश्य खतरनाक कचरे के अवैध सीमा पार तस्करी पर रोक लगाना तथा कर और सीमा शुल्क से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच क्षमता को मजबूत करना है। कैबिनेट ने इसका भी जायजा लिया। विदेश की खबरों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों तथा तटीय रेडर चौकियों पर हमले किए। ये कार्रवाई वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर एक मालवाहक जहाज पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद की गई, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध विराम को गंभीर झटका लगा है।

मौसम की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और पूर्व तथा ऊंचाइयों पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान बादल घेराएंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बारिश हो सकती है। दिन के दौरान कभी कभार मूसलाधार बारिश हो सकती है और बादल भी गरज सकते हैं। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रह सकते हैं। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। साथ में दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों से भी दूर रहें। आज के लिए सूर्योदय 7:45 बजे हुआ, सूर्यास्त होगा 5:40 पर।

खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहसों का समापन करते हुए कहा कि आज लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये कोई उपहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया निवेश है। उन्होंने बजट में शामिल उन उपायों का बचाव किया जिनके तहत मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है। सार्वजनिक ऋण बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक ये 681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा जो जीडीपी का 87.8% होगा। सरकार का लक्ष्य इस अनुपात को 2027 तक 85.5% और 2029 तक 80% से नीचे लाना है।

हैं। मंत्रिपरिषद ने मेलघोस जेल में 9 दिसंबर को ओजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर कमियों एवं लापरवाहियों को उजागर किया गया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों पर हमले किए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। अन्य रोमांचक मैचों में स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात दी, जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। 6:57 हो चुके हैं। बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है फैजन के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। शिव प्रकाश मंदिर रोड सत्यमेल त्रियुले में 67 साल के 67-year-old श्री नंकेश्वर शंकर जो मिलो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती शंकर के मकान शिव प्रकाश मंदिर रोड सत्यमेल त्रियुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए SS ऑलेन त्रियुले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे अतिफ्री PM जयपाल रोड प्लेंडी पपाई में 67 साल की 67-year-old श्री वीरा स्वामी चेंगन जो नाडेन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 इनके मकान जयपाल रोड प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेंडी पपाई की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 12:30। लेटो लेन रोजबेल में 79 साल की 79-year-old बीबी अलीमा मियाजन जो बीबी अलीमा से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे भगालू जाकिया के मकान लेटो लेन रोजबेल से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM होटवायाल कोंगोमा में 98 साल की 98-year-old श्रीमती भावंती सीओ पैदाशी नाम सुवारत है जो भावंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान होटवायाल कोंगोमा से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआमाशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM डामफर लेन मोताइन ब्लॉन्च में 90 साल की 90-year-old बीबी अहिशा भकु पैराशना मोहन जो आईसू से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10 बजे इनके मकान डामफर लेन मोताइन ब्लॉन्च से निकालकर दफनाने के लिए मोताइन ब्लॉन्च का ही कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM शिवाजी रोड मेलगोज में 77 साल की 77-year-old श्री सोनालाल सुरजन जो धुन से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान शिवाजी गली मेलगोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई ब्लॉन्च की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM वैजी रोड गुडलैंड्स में 80 साल की 80-year-old श्रीमती सेलुन मोदी मुटु पैदाशी नाम मोदी मुटु जो अमरु से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 1 बजे के बेटे कोविलन मोदी मुटु के मकान वैजी रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM लाबो डिस्ट्रिक्ट बोआरोज पॉम्पलेमूस में 76 साल के 76-year-old श्री मनलाल रामसर जो आनंद बली से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे राम सिंह रामसर के मकान

बोडिस्ट्रे बुआहोज पॉम्प्लेमुस से उठाकर दाह संस्कार के लिए पॉम्प्लेमुस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मैडम लुलू रोजबेल में 75 साल की 75 ईयर ओल्ड श्री मुनेश्वर रामनोहर जो ईश्वर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे श्री महेंद्र रामनोहर के मकान मैडम लुलू रोजबेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए मागजानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। अविनी माइकल लील पाई में 68 साल के 68 ईयर ओल्ड श्री कृष्णा गणेश जो माजी से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे अश्ली गणेश के मकान अविनी माइकल लील पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 1 PM। साइडिंग रोड न्यू ग्रोव में 83 साल की 83 ईयर ओल्ड श्रीमती गौरी गोबिन पैदाइश नाम लूफो जो जामुंटी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके बेटे संदेश गोबिन के मकान साइडिंग रोड न्यू ग्रोव से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्राणमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। माम बहाल रोड बुआशेरी में 72 साल की 78 ईयर ओल्ड श्रीमती भानुमती माताओ जो भानु से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 10 बजे इनके भाई विजय माताओ के मकान माम बहाल रोड बुआशेरी से उठाकर दाह संस्कार के लिए गाँव बुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 136 शातुडो स्ट्रीट थॉकबा पोटरी में 80 साल के 80 ईयर ओल्ड श्री विजय रामनाथ जो विजयी से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती दयनियंती रामनाथ के मकान श्रीमती दयनियंती रामनाथ के मकान नंबर 136 शातुडो स्ट्रीट थॉकबा पोटरी से उठाकर दाह संस्कार के लिए थॉकबा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। कालीमाई गली खुशनुआ में 63 साल के 63 ईयर ओल्ड श्री केपाचर्या ठाकुर सिंह जो मेतानंद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे की पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमाई रोड होशनुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए होशनुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड बेलवेडेरा में 42 साल की 42 ईयर ओल्ड श्रीमती ज्योति चतुआ पैदाश नाम सुकन जो करिश्मा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है आज दिन के 11:15 बजे इनके पिता श्री राजन सुकन के मकान होटवायाल बेलवेडेरे से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कौंडे मास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। श्वाजी रोड पोजे फ्लाक में 81 साल की 81 ईयर ओल्ड श्रीमती निराधा रामा पैदाइश नाम सिमुति जो दिलावती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी बेटी सान्यो बंदीप के मकान श्वाजी रोड पोजे फ्लाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। काली लेन बॉबू में 80 साल के 80 ईयर ओल्ड श्री हरिबस थुप सिंह जानकी जो डोडो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान काली लेन बॉबू से उठाकर दाह संस्कार के लिए
मोटाई सैंपियर बॉबो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: परमिशन टुडे एट नून और रिवर व्यू लेन वेडर में 75 साल के 75 ईयर ओल्ड श्री राजेश्वरन पिले नलाताओं भी श्री राजेश्वरन पिले नलाताओं भी जो इंदिरन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थियाज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सेवाक्यों वी नलाटोंबी के मकान रिवर व्यू लेन वेडर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्तान सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good morning. 7:60 हुए हैं.
4: You're listening to Radio Musti.
5: Comme dit Madame Sheila, informe-les, nous gagnons beaucoup plus.
4: Timeless Tarka.
1: RM2.
4: Timeless Tarka.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: 7:15 होने को है एंड कभी मैं कहूँ गाना आपको मीठे से जगाने के लिए लता जी और हरिहरन जी की आवाज़ में गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका वंस अगेन RM2 रेडियो मस्ती पर इट्स नर्मनी और 9 बजे तक फिर से लेकर आएंगे आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स तो यही RM2 रेडियो मस्ती पर वी स्टे कनेक्टेड और वाइब करते हैं
3: प्ले करो स्माइल करो बॉलीवुड के साथ चल करो दिल से बॉलीवुड Radio.

0: खूबसूरत गाने आपका साथ देने के लिए ऑन दिस ब्यूटीफुल सैटरडे कुछ ही देर में देयर इज गोना बी योर स्पोर्ट्स न्यूज़ तो यहीं पर स्टे ट्यून्ड ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती
1: आरएम2 रेडियो मस्ती
2: Respirez. Les jackpots du loto et du loto plus d'aujourd'hui vous apportent un peu d'air frais. Le jackpot du loto plus est à environ 18 millions d'euros et celui du loto est estimé à 20 millions d'euros. 20 millions. La sécheresse s'aggrave, les coupures d'eau, on n'y coupera pas. Récupérez l'eau de rinçage de vos légumes pour arroser vos plantes. Chaque petit geste aujourd'hui fait une grande différence demain.
3: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsable.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: 7:30 हैं and चलिए सुनते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आपसे विकास जी. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग निलमणि एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपना पूरा जादू और जलवा दिखा रहा है. यदि इसी समय ग्रुप जी की किस्मत लिखी जा रही है तो अफ्रीका का नया दुलारा केप वर्दे विश्व फुटबॉल का नया चेहरा, नया दुलारा, नई उमंग और नई आशा बन गया है. केप वर्दे क्वालिफाइड फॉर द लास्ट 32 राउंड. तीन मैचों में तीन ड्रॉ और इन तीन ड्रॉज के बल पर केप वर्दे पहुंच गया है नॉकआउट स्टेज में. तो उधर फ्रांस के बालों दो विजेता उस्मान देम्बेले ने 32 मिनटों के अंदर एक हैट्रिक मारकर नया इतिहास रचा है. पर बता दें कि सबसे पहले इसी समय ग्रुप जी में दो मैच खेले जा रहे हैं और इजिप्ट ने एक पहला गोल स्कोर किया. खेल का ये अभी 31वां मिनट चल रहा है. 7 बजे से ये दो मैच शुरू किए गए. इजिप्ट 1 ईरान 1. खेल के 5वें मिनट पर इजिप्ट ने एक पहला गोल स्कोर किया, फिर ईरान ने 20वें पर इक्वलाइज किया. सो इजिप्ट की ओर से महमूद सबेर और रेजालन का एक गोल, इक्वलाइजिंग गोल ईरान की ओर से. इजिप्ट 1 ईरान 1. इसी में बेल्जियम ने अभी अभी एक गोल स्कोर किया है न्यूजीलैंड के विरुद्ध. सो बेल्जियम को बधाई. ये गोल स्कोर किया लियांड्रो थोसा ने और इस जीत के बल पर बेल्जियम क्वालिफाइड हो सकता है. सो ये ग्रुप जो है अभी भी कुछ निश्चित नहीं है इस ग्रुप में. इस बारे में सुनते रहिए. न्यूजीलैंड 0 बेल्जियम 1. खेल का ये 30वां मिनट है. इजिप्ट 1 ईरान 1. अभी आज रात बल्कि कल सुबह 1 बजे दो अन्य मैच रखे गए हैं इसी वर्ल्ड कप में. सो इंग्लैंड खेलेगा पनामा के विरुद्ध और इंग्लैंड के लिए लगभग क्वालिफाइड है, लेकिन अभी भी उसको ये मैच जीतना ही पड़ेगा. लास्ट

टूर्नामेंट में पक्का करने के लिए। इतना सब कुछ इसी समय जो मैच खेले जा रहे हैं। कल सुबह 1 बजे हमने बताया कि ग्रुप एल में क्रोएशिया वर्सेस गाना, पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यदि विश्व कप के प्रथम 32 क्वालिफाइड टीमें सामने लगभग आ गई हैं तो बेस्ट ऑफ एट के लिए घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर सोमवार से मंडे से लास्ट 32 राउंड शुरू। बता दें कि केप वर्दे का मुकाबला अब अर्जेंटीना से होगा। बधाई केप वर्दे को लास्ट 32 राउंड में पहुंचने के लिए। एक नज़र कल के खेले गए नतीजों की ओर। फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से परास्त किया। इसमें जो क्लासिक मुकाबला की उम्मीद की जा रही थी डेम्बेले के साथ किलियान एम्बापे और अर्लिंग हैलैंड के बीच, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अर्लिंग हैलैंड को आराम करने का मौका दिया गया। दोनों ही टीमें पहले से क्वालिफाइड थी, इस कारण अर्लिंग हैलैंड कल ये मैच नहीं खेल पाया। नॉर्वे 1-4। उस्मान डेम्बेले ने प्रथम 3 गोल स्कोर किए खेल के 7वें, 20वें और 32वें मिनट पर। 1994 वर्ल्ड कप 1994 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रथम 32 मिनटों में किसी खिलाड़ी ने एक हैट्रिक स्कोर की है। कुल मिलाकर डेम्बेले ने अब तक 4 गोल स्कोर किए हैं इस वर्ल्ड कप में। और आखिर में कल के इस मुकाबले में 94वें मिनट पर देजिरे ड्यूए ने एक और कील ठोंकी। 9-1, 4। इसी ग्रुप में कल एक और मैच खेला गया जिसमें सेनेगल के तिरंगा के शेरों ने इराक को 5-0 से पछाड़ा और इससे जीत के साथ सेनेगल अभी भी बेस्ट ऑफ एट में आ सकता है, लेकिन कल तक इंतजार करना पड़ेगा जब आखिरी मैच खेले जाएंगे। सेनेगल 5-0, 9-1, 4। कल ही जापान और स्वीडन ने मैच ड्रॉ किया 1-1। इस प्रकार जापान क्वालिफाइड है। नेदरलैंड ने इसी ग्रुप में चुनिजिया को 3-1 से परास्त किया। नेदरलैंड्स के लिए ब्रॉबी का एक और गोल और एक ओन गोल के बाद यान वान हेक ने तीसरा गोल स्कोर करके नेदरलैंड्स को क्वालिफाइड कर दिया। नेदरलैंड्स को हार्दिक बधाई। फिर कल ही जो बाकी मैच खेले गए, पराग्वे 0-0, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड। यूएसए की हार हुई, टर्की ने उसे 3-2 से परास्त किया। पहली जीत, फिर भी टर्की आउट, ऑस्ट्रेलिया इन, यूएसए इन। 9-1, 4, 5-0। फिर आज सुबह जो मैच खेले जा रहे हैं, बता दें कि आज ही इसी समय कल केप वर्दे 0-0, यूरोगुए 0-1। स्पेन ने जब यूरोगुए को हराया तब जाकर केप वर्दे क्वालिफाइड हो पाया। स्पेन के लिए एलेक्स बेना का ये गोल 42nd मिनट पर, स्पेन क्वालिफाइड है और यूरोगुए आउट। यूरोगुए के पास 2 अंक, केप वर्दे के पास 3 मैचों में 3 अंक। केप वर्दे और स्पेन क्वालिफाइड है। केप वर्दे का अगला मुकाबला होगा अर्जेंटीना से, लियो मेसी के अर्जेंटीना से। हार्दिक बधाई केप वर्दे को, अफ्रीका का नया शेर, नई उमंग, नई आशा, नया चेहरा, नया चहेता। इतना सब कुछ वर्ल्ड कप को लेकर। एक नज़र एक बार फिर आज के जो मैच खेले जा रहे हैं। इजिप्ट अभी भी 1-1। खेल का ये 34वां मिनट है, 34th मिनट। न्यूजीलैंड 0-1। अभी भी इस ग्रुप की किस्मत बाकी है। चलिए एक नज़र दौड़ाते हैं अब तक कौन कौन सी टीमें क्वालिफाइड हैं। ग्रुप ए में मेक्सिको, साउथ अफ्रीका क्वालिफाइड, स्विट्जरलैंड, कनाडा ग्रुप बी से, ग्रुप सी से ब्राज़ील और मोरक्को इन, ग्रुप डी में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड, फिर ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट भी क्वालिफाइड, हालांकि जर्मनी की हार हुई थी, ये दोनों टीमें आगे बढ़ पाई। ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स और जापान, ग्रुप जी में इसी समय इजिप्त के पास अभी है 5 अंक, बेल्जियम के पास भी है 5 अंक, क्योंकि इस समय इन दोनों की इजिप्त ड्रॉ कर रहा है, बेल्जियम की जीत हो रही है, लेकिन किसी भी परिवर्तन की स्थिति में ईरान भी क्वालिफाइड हो सकता है। ईरान के पास अभी है 3 अंक इस ड्रॉ के साथ। अंत तक देखना पड़ेगा कि क्या होगा। ग्रुप एच में स्पेन और केप वर्दे क्वालिफाइड हैं। ग्रुप आई में फ्रांस और नॉर्वे, ग्रुप जे में अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना कह सकते हैं क्वालिफाइड हो गया है 6 अंकों के साथ, क्योंकि इन्हें अभी भी अपना तीसरा मैच खेलना बाकी है। ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया के पास हैं अभी 3-3 अंक, अभी भी इनकी किस्मत बाकी है। और ग्रुप के में कोलंबिया, पोर्चुगल, फिर भी डेमोक्रेटिक

0: रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास एक अंक है और पोर्चुगल के पास चार अंक, और ग्रुप एल में इंग्लैंड के पास चार अंक, गाना के पास भी चार अंक, क्रोएशिया के पास है तीन अंक, एक आखिरी मैच खेलना बाकी है। इस कारण थर्ड प्लेस रैंकिंग के लिए भी कल के इन आखिरी मैचों के बाद ही कुछ तय हो पाएगा। वर्ल्ड कप 2026 जारी है, जादू भी और जलवा भी, सो सुनते रहिए। और बता दें कि मॉरिशस में आज शौदे मास में द मॉरिशस टेलीकॉम बाबे कप यानी सीजन का दूसरा क्लासिक रेस आज शाम 3:30 बजे 1600 मीटर पर दौड़ा जाएगा। 11 घोड़े भाग ले रहे हैं। मेरिडियस, एट माई कमांड, गुड काउंसिल, सेलिकुए, अंडरवर्ल्ड, जावियों, पोर्ट लुई, कैप्टन लानिस्टर, जिल मोरिस, रैपिडाश और बोगालेस। सो सीजन की ये दूसरी क्लासिक रेस द मॉरिशस टेलीकॉम बाबे कप आज शाम 3:30 बजे। क्षेत्रीय स्तर पर ही मॉरिशस की रेस्ट जीनो वेटेरा फुटबॉल टीम सेशल्स में एक त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। पहला मैच कल रविवार को रेस्ट जीनो वर्सेस फालें इन आइलैंड और दूसरा मैच 1 जुलाई को खेला जाएगा सेशल्स लेजेंड्स के विरुद्ध। द वन एंड ओनली गोल्डन स्टार्स फुटबॉल क्लब स्वर्गीय अजय भिखारी के सम्मान में स्वानसी फुटबॉल क्लब के सहयोग से कल एक फुटबॉल उत्सव आयोजित कर रहा है। कल दिन के 2 बजे प्रेंदे पापाई के फुटबॉल मैदान पे क्रिस्टल बीच रिजॉर्ट होटल और स्वानसी फुटबॉल क्लब के बीच एक पहला मैच खेला जाएगा। फिर रेडिसन ब्लू अजूर होटल वर्सेस सिलेक्शन प्रेंदे पापाई। और आखिर में एक बार फिर इस समय जो मैच खेले जा रहे हैं, दो मैच ग्रुप जी में, अभी भी खेल का ये 38वां मिनट है, 38 मिनट, इजिप्ट 1 ईरान 1 न्यूजीलैंड 0 बेल्जियम 1। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Business Tadka.
1: RM2.
2: ऐसे ही आपके साथ में टाइम बीत रही है वेरी क्विकली, लेकिन नो वरीज जी, आपको बूस्टअप देने के लिए निलमन यहीं पर है। अगर बारिश हो रही है, अपने सारे प्रिकॉशंस आप लेते रहें और बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। बिग हेलो टू जना जी जो जुड़ चुकी है सुबह से, जो भाई से आरती जी भी है, गुड मॉर्निंग। तो इस लम्हे को और स्पेशल बनाने के लिए डेडिकेट करते हैं ये अगला गाना टू ऑल दोज जो भी कनेक्टेड है हमारे साथ RM2 वीडियो मस्ती पर।
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Good morning. सुबह के 8 बजे हैं. ठबजलवा पेशबा भोजपुरी समाचार. एक बार फिर से नमस्ते भोजपुरी भोजपुरी समाचार में तोहर स्वागत बाते. आज खातिर लेवल गल युवा लोग के आज खातिर लेवल गल फैसला युवा लोग खातिर भविष्य के सुरक्षित करी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम काल संसद में बजट बहस के सार कुछ ऐसे ही संदेश संगे प्रस्तुत कर लन. वो बोलन कि वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार के लिए के वरिष्ठ नागरिक लोग के चिंता के वो निमन से समझेलन. बकेर उनकर अनुसार देश गो महत्वपूर्ण मोड़ पर खराबा. अब चुनाव यह कि या तो समय रहते नियंत्रित और सुनियोजित सुधार करल जाए या फिर निकट भविष्य में एगो गंभीर आर्थिक संकट के सामना करल जाए. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ये भी बोलन कि जो संकट के आशंका आज व्यक्त करल जा बा ओकर जड़ पूर्व सरकार के कुछ फैसला में निहित बाती. प्रधानमंत्री के अनुसार 2019 के आम चुनाव के बाद वृद्धावस्था पेंशन के 9000 रुपया से बढ़ा के 13000 रुपया कर देवल गया रहल. जबकि विशेषज्ञ रिपोर्ट अगते ही चेतावनी दे ले रहल कि ये कदम लंबा समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रही. ये अतिरिक्त खर्च के पूरा करे खातिर तत्कालीन सरकार सामाजिक योगदान योजना यानी कि CSJ लागू कर ले रहल. बकेर प्रधानमंत्री ये बोलत हवन कि ये कोष के उपयोग ओकर मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं रहल बाते. ये कोनो उपहार नहीं है बल्कि आय

0: लापिरही के मानव पूंजी में करल गल उगु निवेश है। काल संसद में बजट भाषण के दौरान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री आर्याना बोमागी बजट में शामिल वो उपाय के बचाव कर लन जिसके तहत मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव के बढ़ा के एक बरिस कर देवल गल बा। एकर में 6 महीना के पूर्ण वेतन सहित छुट्टी और 6 महीना के वैकल्पिक आधा वेतन होला छुट्टी शामिल बाती। साथ ही पैटर्निटी लीव के बढ़ा के 6 सप्ताह कर देवल गल बा और हर महीना 1 दिन के मेंस्ट्रुअल लीव भी शुरू कर गल बा। वो आलोचना के भी जवाब दिलन जकर में कहल गल बा कि ई प्रावधान के कारण महिला के भर्ती प्रभावित हो सकी। वो स्पष्ट करलन कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट कर्मचारी के कोनो भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करेला। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री बाल संरक्षण के मुद्दा पर भी विस्तार से बात करलन। वो खास रूप से चाइल्ड अडॉप्शन बिल पर जोर दिलन जकरा वो एगो महत्वपूर्ण सुधार बतैलन। ये विधेयक के मकसद अडॉप्शन से जुड़ल कानूनी ढांचा के आधुनिकीकरण करे के और वो प्रक्रिया के सरल और तेज बनाए के है जिनके अक्सर बहुत लंबा और जटिल मानल जाला। ये विधेयक के तहत एगो समर्पित अडॉप्शन अथॉरिटी के स्थापना के प्रस्ताव बा। एक मुख्य उद्देश्य इस सुनिश्चित करे के है कि हर निर्णय लड़का के सर्वोत्तम हित के ध्यान में रख के करल जाए और अडॉप्शन के प्रतीक्षा कर रहल लड़का के देखभाल और पुनर्वास व्यवस्था के और बेहतर बनावल जा सके। सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेप्ट बजट 2026-2027 के सबसे बड़ा चुनौती में से एक है। सरकार के अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक 681.9 बिलियन रुपया तक पहुँच सकी जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 87.8% रही। ये बरिस अगते ही 88.5% के तुलना में थोड़ा कम है। सरकार के लक्ष्य ये अनुपात रेशो के 2027 तक 85.5% और 2029 तक 80% से नीचे आने की है। ये दिशा के सकारात्मक मानल जाता बकीर एक सफलता आर्थिक विकास सुधार के प्रभावी क्रियान्वयन और अभी भी अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर निर्भर करी। MCCI के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी के अनुसार सार्वजनिक कर्ज में एक कमी निवेशक लोग के एगो सकारात्मक संकेत है। हालांकि वो कहलन कि आर्थिक पुनरुद्धार से जुड़ल उपाय के तेजी से लागू करे के चाहिए। वो ये भी बोलन कि चीनी पर टैक्स और समानांतर आयात जैसन मुद्दा पर सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संवाद जारी रहे के चाहिए जिसमें व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा बनल रहे। अर्थशास्त्री मनीषा दुखुनी बोलन कि GDP के अनुपात में सार्वजनिक कर्ज में 0.7% अंक की कमी दर्शावेला कि सरकार राजकोषीय संतुलन यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की दिशा में वास्तविक प्रयास कर लेबा। उबलन कि चूंकि सार्वजनिक कर्ज अभी भी GDP के 80% से जस्ती है, आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3% रहे की उम्मीद बा और ब्याज दर अभी ऊंचा बाती, यही खातिर सतर्क रहे के जरूरी है। वो बोलन वो याद दिलेलन कि बजट के गो प्रमुख योजना फिलहाल स्थगित होला के कारण कुछ अनुमान आगे चल के बदली सकी। अंत में उबलन के मध्य पूर्व में जारी तनाव ऊर्जा और आयात की लागत बढ़ाई सकी। बकिर यदि सरकार द्वारा घोषित सुधार जैसे कि स्टार्टअप एक्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, खास औद्योगिक जोन और ऊर्जा संक्रमण सफलतापूर्वक लागू करल जाए तो वो दीर्घकाल में आर्थिक विकास के मजबूत कर सकी और सार्वजनिक कर्ज के बोझ के कमती करे में मददगार साबित हो सके। आज 27 जून के संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनावल जात बा। इस दिवस के मकसद रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में एसएमई के महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता दी की है। वित्त वर्ष 2026-2027 की बजट देश के आर्थिक परिवर्तन के रणनीति में एसएमईज और स्टार्टअप के केंद्र में खिला सरकार की स्पष्ट उद्देश्य नवाचारी और प्रतिस्पर्धी उद्योग के एगो नवा पीढ़ी तैयार करे की है जिन रोजगार सृजित करी और आर्थिक विकास के गति दी सके। मंत्रिपरिषद काल मेलगोज जेल में 9 दिसंबर के औजी सेलमो के मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिश की जायजा ले रख जांच आयोग के रिपोर्ट में कई गंभीर कमी और लापरवाही के उजागर कर गलबा। इस सिफारिश के प्रभावी ढंग से लागू करे खातिर सरकार एगो खास कमेटी के गठन करी जन आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन की निगरानी रखी। और विदेश में अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करके कालसुक के ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थल पर हमला कर लेवाते। ये कार्रवाई वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर एगो मालवाहक जहाज पर हमला करे के आरोप लगेला के बाद करल गल जिकर में मध्य पूर्व में युद्ध विराम के गंभीर झटका लगल बा। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबला में फ्रांस नोवे के 4-1 से सेनेगाल इराक के 5-0 से हरेलक। दूसरे रोमांचक मैच में स्पेन यूरोगवे के 1-0 से मात दिलक जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे के मुकाबला गोल रहित यानी कि 0-0 से ड्रो पर समाप्त रहल। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त पर भल धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening to a Radio Masti.
3: L'habitude, ils avaient poussé en zé, mon tea time avec Formland.
4: Oui, monsieur là, mais petit déjeuner.
3: Asté, et nous céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, tac, tac, le petit déjeuner ne paraît.
4: Ah, ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smot.
3: Mais normal, et quand vous sortez du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille, autour d'une bonne préparation avec Formland.
4: Mmh, ou fais-moi faire.
3: Asté avec Formland Hot Chocolate, l'avion complice ta mam.
4: Si à tout qui s'agose pour les Sengu, passez.
3: Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
4: Asté avec Formland, nous gagnons encore beaucoup plus.
3: Formland, ça même nous, Smart Choice.
5: Timeless Tarka.
6: RM2.
5: Timeless Tarka.

0: गाने से आपको पता लग गया होगा कि टाइमलेस तड़का का सिलसिला जारी हो चुका है कब से, एंड बस एक ही आवर बचा है, तो ट्यून इन रही आरएमटू रेडियो मस्ती पर ही। लेकिन कुछ भी प्लान करने से पहले जान लेते हैं मौसम का हाल।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
2: ओनली टू विनर्स।
3: दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे, देश में अस्थिरता रहेगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे, पूर्व एवं ऊंचाइयों पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे, पूर्व तथा सेंट्रल पार्टों पर जहां तहां बारिश होगी। कभी कभार मूसलाधार बारिश के साथ बादल भी गरज सकते हैं, कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकते हैं। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में साथ में एवं दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों में भी न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त शाम के 5:40।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Fin de mois. Et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Les 2 kilos de riz basmati Rajmahal XXXL 11-21 à 129,95 et les 5 litres de liquide vaisselle Winners à 139,95. Pas oublié, Excan to pay te gagne plus points Weave.
5: On est tous Winners!
1: RM2
2: Radio Musti.

0: défis de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: वैसे मजाक कली हमें सीख देती है कि आज़ादी सिर्फ पंख नहीं देती, उड़ने का हौसला भी देती है। एंड फ्रीडम का असली मतलब है अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना। सो लिव फ्रीली माय डियर फ्रेंड, ड्रीम बिग और हर दिन दिल से जियो।
0: अवांट टू डिफी टू लॉन्ग शिफ्ट कमेंस पर एन बॉन डिसीजन नेस्कैफे।
2: RM2 Radio Mus-

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
2: रेडियो मस्ती के साथ
1: वर्ल्ड कप मैगजीन,
3: वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन. कमाल हो गया. हिस्ट्री मेकर केप वर्दे अनबीटन, अपराजित ग्रुप एच से क्वालिफाई हुआ नॉकआउट राउंड के लिए. पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने आए हैं और कमाल कर गए द ब्लू शार्क्स. अब केप वर्दे का सामना वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के खिलाफ होगा ये 3 जुलाई को. केप वर्दे के ग्रुप से दो बार वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे और सऊदी अरेबिया गए घास खाने. स्पेन ग्रुप टॉप कर गया उरुग्वे को 1-0 से हरा के. नॉर्वे ने अर्लिंग अलॉन और कई अन्य फर्स्ट टीम खिलाड़ियों को आराम करने को कहा और इसकी सजा मिली सूद समेत. फ्रांस से धुलाई 4-1 के स्कोर पर. डेम्बेले ने हैट्रिक स्कोर किया इस ग्रुप में. सेनेगल ने इराक को गलाया 5-0 से. फ्रांस, नॉर्वे और मोस्ट प्रोबेबली सेनेगल भी क्वालिफाई अगले राउंड के लिए. भी इसी समय मैच चल रहा है इजिप्ट और ईरान के बीच. स्कोर 1-1 है जबकि बेल्जियम 2-0 से आगे है. अभी के लिए इजिप्ट और बेल्जियम क्वालिफाई हैं. ईरान भी अगर ड्रॉ करता है अपना मैच तो वो क्वालिफाई हो सकता है. तो अभी फाइनल रिजल्ट थोड़ी देर बाद आपको देंगे. आज के मैच ग्रुप एल में क्रोएशिया वर्सेस गाना, पनामा वर्सेस इंग्लैंड. इंग्लैंड और गाना दोनों के पास 4-4 अंक हैं, दोनों क्वालिफाई हैं. क्रोएशिया के पास 3 अंक हैं, गोल डिफरेंस -1. पनामा के पास ठेंगा. ग्रुप टॉप कौन करेगा आज पता चलेगा और क्रोएशिया और गाना दूसरे स्थान के लिए भिड़ेंगे. कल सुबह 3:30 बजे कोलंबिया वर्सेस पोर्टुगल, दोनों क्वालिफाई हैं लेकिन फर्स्ट पोजीशन कौन लेगा इस मैच के बाद पता चलेगा. कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पास है एक अच्छा मौका क्वालिफाई होने के लिए. उसके पास है 1 अंक और उसका मुकाबला उज्बेकिस्तान से है जो पहले से ही आउट है. और कल सुबह 6 बजे अल्जीरिया का मुकाबला ऑस्ट्रिया से, जॉर्डन का मुकाबला अर्जेंटीना से. अर्जेंटीना के पास है 6 अंक, ऑस्ट्रिया के पास 3, अल्जीरिया के पास 3, जॉर्डन के पास कोई अंक नहीं है. ऑस्ट्रिया अल्जीरिया अगर अपना मैच ड्रॉ करते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे. अर्जेंटीना तो पहले से ही क्वालिफाई है, जॉर्डन पहले से

0: आउट है, तो क्या होगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। थर्ड प्लेस रैंकिंग में अगर देखें तो स्वीडन, इक्वाडोर, बोस्निया, पाराग्वे, इनके पास 4 अंक है, क्वालिफाई हैं। सेनेगल के पास 3 अंक, गोल डिफरेंस +2, लगभग वो भी क्वालिफाई। ईरान, क्रोएशिया, साउथ कोरिया, ये भी क्वालिफाई हो सकते हैं, अभी best 8 में है, लेकिन नीचे है अल्जीरिया, स्कॉटलैंड, कोंगो, स्कॉटलैंड -3, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अल्जीरिया खेलेगा तो कोंगो खेल रहा है, उसके लिए भी काम आसान हो सकता है जीत के साथ। क्या होगा क्या नहीं, परमिटेशंस हैं, ये सब होता रहता है, विल बी अपडेटिंग यू एनी टाइम। सो दैट वाज द वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June से 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

वैसे सुबह का टाइम है और इस टाइम को एक चाय या कॉफी जरूर परफेक्ट होती ना। तो अगर भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फिर आपकी सेकंड टाइम चाय पी रहे हो, मस्ट एंजॉय कीजिए गानों के साथ RM2 रेडियो मस्ती पर ही।

0: एस तड़का
1: RM2
2: 8:52 होने को है न ऐसे ही टाइम हो चला है फुमीर गो एंड पूनम चुका मैं से हाय एंड वैसे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि आज है इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल लुकिंग वेरी स्वीट यस पूनम आ चुकी है वो स्माइल कर रही है स्टूडियो में है हेलो पूनम
3: हेलो हाय लिसनर्स कैसे हो भाई आज पाइनएप्पल डे है
2: yeah.
3: ये मुझे पता था कि आज पाइनएप्पल डे क्योंकि रात को ही आपने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था इसलिए मैं लेकर आ गई आपके लिए सलाद
2: Oh my God, सलाद लेकर आई हो yes. मेरे साथ शेयर करना जरूर
3: हाँ हाँ पूरा डब्बा पड़ा है आज जिसने लिसनर्स ने भी खाना है खाओ नहीं तो अपने घर में बनाओ आज सलाद क्योंकि बहुत ही अच्छी होती है भैया हेल्थ के लिए बहुत ही मस्त है
2: हाँ हाँ जी बिल्कुल सही कहा एंड जिंदगी भी पाइनएप्पल जैसी होनी चाहिए थोड़ी स्वीट थोड़ी टेंजी लेकिन हमेशा रिफ्रेशिंग तो एक स्माइल के साथ बोलना अपने आप को स्टे ट्रॉपिकल एंड ऐसे ही कीप वाइबिंग विद योर RM2 रेडियो मस्ती क्योंकि नेक्स्ट आने वाला है योर पॉली ब्रंच विद पूनम

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं।

0: अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं करुणा लालू संक्षिप्त समाचार लेकर। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार अभी, सभी को नमस्कार। आज लिए गए फैसले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल संसद में बजट बहस का सार कुछ इसी संदेश के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों को लेकर वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं को वे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उनके अनुसार देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अब चुनाव ये हैं कि या तो समय रहते नियंत्रित और सुनियोजित सुधार किए जाए या फिर निकट भविष्य में गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया जाए। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि जिस संकट की आशंका आज व्यक्त की जा रही है उसकी जड़ें पूर्व सरकार के कुछ फैसलों में निहित हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार 2019 के आम चुनावों के बाद वृद्धावस्था पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दिया गया था, जबकि कई विशेषज्ञ रिपोर्टें पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि ये कदम लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होगा। इस अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने सीएजी लागू की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोष का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं किया गया। ये कोई उपहार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया निवेश है। कल संसद में अपने भाषण के दौरान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री ने बजट में शामिल उन उपायों का बचाव किया जिसके तहत मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है। इसमें 6 महीने का पूर्ण वेतन सहित छुट्टियां और 6 महीने का वैकल्पिक आधे वेतन वाली छुट्टियां शामिल हैं। साथ ही पैटर्निटी लीव को बढ़ाकर 6 सप्ताह किया गया और हर महीने 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश यानी कि मेंस्ट्रुअल लीव

0: भी शुरू किया गया है। उन्होंने उन आलोचनाओं का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि इन प्रावधानों के कारण महिलाओं की भर्ती प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एक्ट कर्मचारियों को किसी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करती हैं। आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में छोटे एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन की रणनीति में SMEs और स्टार्टअप्स को केंद्र में रखता है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य नवाचारी और प्रतिस्पर्धी उद्यमों की एक नई पीढ़ी तैयार करना है जो रोजगार सृजित करे और आर्थिक विकास को गति दे। और विदेशी स्तर पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण पर हमले किए हैं। ये कार्रवाई वाशिंगटन द्वारा तेहरान पर एक मालवाहक जहाज पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद की गई जिससे मध्य पूर्व में युद्ध विराम को गंभीर झटका लगा है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया और सेनेगल ने इराक को 5-0 से। अन्य रोमांचक मैचों में स्पेन ने यूरोग्वे को 1-0 से मात दी जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे का मुकाबला गोल रहित यानी कि 0-0 ड्रॉ पर रहा। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: हम आपको धन्यवाद करते हैं।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

nicely, Jay.

0: का स्वागत।
1: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
2: अरे वाह क्या बात हो गई, ठंडी हवा, हल्की बारिश और मॉरिशस का मौसम तो आज ऑसम बन गया है। सबने निकाल लिए अपने कैप्स, हैट्स, कोट्स, जैकेट्स एंड ग्लोव्स भी। तो चलिए, बड़े दिनों बाद आई है इस सर्दी का दिल, और मैं कहती हूँ ये जो दिन है ना, इसको बनाना है, वेलकम करना है। बस कहते हैं सर्दी आ जाए तो बस फिर और बनते हैं घर में बढ़िया बढ़िया से खाने, और मिलती है मॉर्निंग मॉर्निंग गर्म गर्म चाय पकौड़े, अरे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं हूँ आ गई हूँ आपके साथ पूनम, बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ फुल मस्ती साथ शुरू हो चुका है आपका बॉली ब्रंच। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने और मस्त रहिए और खुश रहिए।
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: मॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:21 हो चुके दोस्तों। अभी कुछ ही मिनट्स पहले स्पेन की 5-1 की जीत हुई। इजिप्ट और ईरान के बीच मैच ड्रॉ हो गया भाई, 1-1 से इजिप्ट क्वालिफाई हो गया और ईरान को थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा। और आज केप वर्दे ने इतिहास रचा है, मैच ड्रॉ कर लिया और क्वालिफाई हुआ। स्पेन भी क्वालिफाई हुआ है और उरागे वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और आज रात फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया, सेनेगल भी जीत पाया। और आज इंग्लैंड का मुकाबला होगा पनामा से और क्रोएशिया खेलेगा घाना के खिलाफ। तो क्या भाई बात है, वर्ल्ड कप 2026 चला पड़ा है, अपने पूरे जोश पे है, उरूस पे है। और कहते हैं जब ऐसा जोश चढ़ रहा हो सबके घरों में तो गानों के साथ में मस्ती भी होती है। थोड़ा बहुत खाइए, अब हमें पता है आप लोगों ने ये करते करते बहुत ही कहते हैं ना कि अपना एक्साइटमेंट दिखाया होगा और कई लोग थोड़े से उदास हो गए। उदास मत होइए।

0: Radio Mustang.
1: We are the sounds of the streets.
2: क्या बात है बेल्जियम की जीत और पहली बारी में क्वालिफाई हो गया. क्या बात है बेल्जियम के सभी चाहने वालों को बेस्ट विशेस.

0: Bali Branch
1: RM2 Radio Masti.
2: दुपट्टा दे रहा नौ रंग दा, क्या बात है भाई। सोनू निगम की आवाज़ और कुणाल की आवाज़ और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप ये गाना सुन रहे थे। बहुत ही मस्त था। और ये नौ रंग जो होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया होते हैं। और आज मैंने बाहर भी देखा है नौ रंग निकले हुए, यानी कि भैया कहते हैं कि जब नौ रंग देख लो तो मस्त मस्त जिंदगी हो जाती है। और फीफा की वजह से अभी भी नींद आ रही है सबको? नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है भैया। आपने एक ही काम करना है, सॉन्ग सुनना है, मूड बनाना है और घर के काम निपटाने हैं। और अपना मूड और अपनी टीम सपोर्ट और डेडिकेशन अगर आपको भेजनी है तो आपको सिर्फ 5491294 पर। और हमें भी बताइए आप किस टीम के साथ थे, क्या मूड चल रहा है, कैसी है दिल की आज, दिन की जो काम है वो कैसे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, ट्रैक पे आ गए हो आप, अपनी बातें, अपनी मुस्कुराहट, सब चीज़ें हमारे भेज दीजिए मैसेज पर और हम आपके साथ जुड़ेंगे आप ही के गानों के साथ।
0: Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 9:45 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम और ये टाइम है आपके राशि फल का। तो जब सबसे पहले शुरू करते हैं
2: एरीज मेष राशि।
1: आज खुद पर थोड़ा सा प्यार बरसाइए, हर काम जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रुक कर मुस्कुराइए, दिन आपको अच्छी एनर्जी देगा, आपके काम सारे बनेंगे, लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज अपने दिल की सुनिए, जो लोग आपके करीब हैं उनसे बात कीजिए, छोटी केयरिंग मोमेंट्स खुशी देंगे, दिन सॉफ्ट और ब्यूटीफुल रहेगा, लकी कलर बनेगा ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी बातें किसी का दिल खुश कर सकती हैं, एक प्यारा सा मैसेज भी मैजिक बन सकता है, अपनी वॉर्म्थ बांटते चलिए, दिन लाइवली रहेगा, सब आपसे प्यार करेंगे और आपके साथ मुस्कुराहट बांटेंगे, लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज अपने इमोशंस को अपनाइए, खुद को भी उतना ही ख्याल रखिए जितना दूसरों का रखते हैं, थोड़ा रेस्ट अपने लिए भी फील कीजिए, थोड़ा सा अपने को पीसफुल मोमेंट दीजिए, लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपकी स्माइल किसी का दिन बना सकती हैं, अपने लाइट को छुपाइए मत, थोड़ा सा सेल्फ लव भी दीजिए, दिन ब्राइट रहेगा, खुद का ख्याल रखिए, लकी कलर है गोल्डन, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज परफेक्शन छोड़कर पीस चुनिए, सब कुछ अपना जो आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद को थोड़ा सा इजी फील कराइए, कभी कभी आप जो गिल्ट में चले जाते हैं उसको बस थोड़ा सा भूल जाइए, दिन स्मूथ रहेगा ओवरऑल, लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज प्यार और बैलेंस दोनों साथ रखिए, अपनों के लिए टाइम निकालिए, एक छोटी सी काइंडनेस बड़ा असर कर सकती है, दिन हैप्पी रहेगा, लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 4।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज दिल थोड़ा हल्का रखिए, हर दिन हर बात को दिल पर बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आपका मूड खराब करता है तो बस स्माइल दिखा दीजिए, खुद को सॉफ्टनेस दीजिए, दिन काल्म रहेगा, ओवरऑल सब आपको प्यार करेंगे।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: वृश्चिक राशि के लिए हम भूल गए आपको बताना कि लकी कलर बनेगा मेहरून और लकी नंबर है 8। और करते हैं बात धनु राशि की, तो आज किसी को

0: आइए अपनी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कीजिए, दिल खुला रखिए और इंजॉय कीजिए। दिन ओवरऑल फन भरा रहेगा, आपको बस थोड़ा सा बाहर जाना है, थोड़ा सा घूमना है। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी जगह, कोई सीनरी या कोई पहाड़ के पास जाना है या कोई अपनों के साथ में कोई थोड़ी सी पिकनिक टाइप बनाना है तो बना सकते हैं। लकी कलर बनेगा पर्पल, लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज काम के साथ रेस्ट भी ज़रूरी है, खुद को अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको बहुत ही अच्छा अपना केयर करना है, अगर सलून जाना चाहते हैं तो जाइए, अगर आपको लगता है कि आपके बाल बढ़ गए, थोड़ा सा फेशियल चाहिए, थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर चाहिए तो बिल्कुल आपका दिन बैलेंस्ड हो जाएगा और आपको पूरे नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही एनर्जी मिलेगी। लकी कलर बनेगा ब्राउन, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज अपने यूनिक सेल्फ और सेलिब्रेट यूनिक नेचर को सेलिब्रेट करने का डे है। आपकी सोच जो है बहुत ही खास रहेगी, हो सकता है आज आप ऐसा कुछ क्रिएटिव सोच लें जो कि बहुत सालों तक आपके साथ वो चीज़ रहेगी। अपने आइडियाज़ पे भरोसा रखिए, सबके साथ शेयर मत कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसको उस चीज़ की कहते हैं ना वैल्यू पता हो, जो आपको आइडिया आ रहा है तो ज़रूर शेयर करना और आपका दिन जो है इंस्पायरिंग बन जाएगा उसके लिए भी, इंसान के लिए, क्योंकि उसको भी आप मिल जाएंगे और आपको वो इंसान मिल जाएगा। तो बस आपका कलर बनेगा इलेक्ट्रिक ब्लू और लकी कलर नंबर बनेगा 11।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज दिल से जीने का दिन है और म्यूज़िक मेमोरीज और अच्छा सा फील करने का दिन है। अपने दिन को अगर आपको जेंटल बनाना है तो आपको बस थोड़ा सा सेल्फ केयर चाहिए और अपने आप को इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा सा गानों के साथ जुड़िए, थोड़ी मूवी देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर परिवार के साथ जुड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको थोड़ा सा घुमाइए फिराइए और अपना दिन अच्छा बनाइए। लकी कलर बनेगा आपका सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो ये था आज का राशिफल, इन्जॉय कीजिए आपका राशिफल और पूरे दिन को भी ये गाना आप सबके लिए।
2: Your daily horoscope, RM2 Radio Masti,
3: Body Branch, RM2 Radio Masti।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check. सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा से. करुणा आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी को नमस्कार. अफ्रीका के सबसे छोटे द्वीपीय देशों में से एक सेशल्स अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी में हैं. सोमवार 29 जून को सेशल्स अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे करेगा. इस अवसर पर 4 दिनों तक विभिन्न समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन समारोहों में भाग लेने के लिए सेशल्स के स्टेट हाउस ने कई मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर होंगे. वे इन समारोहों के मुख्य अतिथि होंगे. मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी शनिवार को सेशल्स पहुंच रहे हैं, जहां वे भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा अफ्रीकी संघ, चीन और रूस के प्रतिनिधि भी समारोह में शामिल होंगे. आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जा रहा है. इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में SMEs की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है. वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन की रणनीति में SMEs और स्टार्टअप्स को केंद्र में रखता है. सरकार का स्पष्ट उद्देश्य नवाचारी और प्रतिस्पर्धी उद्यमों की एक नई पीढ़ी तैयार करना है, जो रोजगार सृजित करे और आर्थिक विकास को गति दे. विदेशी स्तर पर पाकिस्तान में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है. भूकंप का केंद्र जमीन से भीतर 35 किलोमीटर की गहराई में था. फिलहाल इस भूकंप से किसी बड़े जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें, मुकाबलों में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया. अन्य रोमांचक मैचों में स्पेन ने यूरोगुए को 1-0 से मात दी, जबकि सऊदी अरब और केप वर्दे का मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर रहा. इजिप्ट और ईरान के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा. वहीं बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराया. आज रात 10 बजे क्रोएशिया और घाना तथा पानामा और इंग्लैंड की टीमों के बीच टक्कर होगी. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार.

0: में 75 साल की 75 ईयर ओल्ड श्री रसंगम पंजनादेन, श्री रसंगम पंजनादेन जो सेल्वा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रोजी पंचनादेन के मकान गुटवायाल बिलियाश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वाजिलो ओलिविया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM मोसेलमा मोरियाल नंबर 1 कोहोमोडेल में 73 साल की 73 ईयर ओल्ड श्री बतमानादेन आमोडों, श्री बतमानादेन आमोडों जो माइवेन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनके मकान नंबर 44 ऑन्ड्रियानम स्ट्रीट मोसेलमो मोरियाल नंबर 1 कोहोमोडेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही बुइले वालिद पुरैत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM और कौ बुम्बई नंबर 2 वाकवा में 79 साल की 79 ईयर ओल्ड श्रीमती राजाम्बाल रामेन जो माला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान कौ बुम्बई नंबर 2 वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्वामा मेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM और कौडिमास के पावे गुटवायाल पेचित काबान में 60 साल की 60 ईयर ओल्ड श्रीमती शोभा रामबाली पैदाइशी नाम दिग नारायण जो शोभा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान रॉयल रोड पेचित काबान कौडिमास के पावे से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: ऑली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 10:11 हो चुके हैं दोस्तों, और आपको कोई रीजन नहीं चाहिए हैप्पी होने का, बस एक अच्छा सा गाना और मूड सेट। बस ऐसे ही होता है, जब आपके मैसेजेस आते हैं तो हमारा भी मूड सेट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जुड़े हैं यलेश जी, और वो कह रहे हैं सभी को भाई ठंड हो गई है, थोड़ा सा गर्म खाओ, घर में रहो, अगर कोई बाहर काम नहीं है तो रेस्ट करो, क्योंकि भाई वीकेंड आ गया है। तो थैंक यू सो मच यलेश, आपको भी हम यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए। सूरज शर्मा साजदा जी जुड़े हुए हैं साथ में और अपने पूरे परिवार के साथ प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सर। ललित जी यूएसए से साथ दे रहे हैं अपनी पूरे 15 पीपल के स्टाफ के साथ में, और कह रहे हैं हमारा RM2 रेडियो मस्ती जब चलता है तो बस हमारे तो काम अपने आप होते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके सर जुड़ने का। विकास एंड रायन जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं हम सबका ख्याल रख रहे हैं यहाँ पर और बिल्कुल मस्त हैं, पर हम सबको ये कह रहे हैं कि अपने घर में रहें, अगर कोई काम ज़्यादा नहीं है रेस्ट करो, ये इंजॉय करो। क्या बात है, ये भी सारे जने आज यही कह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इस टाइम थकान हो रखी है, सबको सोने का दिल कर रहा होगा, पर हम आपको कहेंगे भाई 12-1 बजे तक तो बिल्कुल मत सोइए जब तक मैं हूँ, उसके बाद थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का, जैसे आपको ठीक लगे। साथ में कमलेश रानी जी जो कि इंडिया से हैं वो जुड़ी हुई हैं, साथ में प्रिया कविश मासी माला जो कि फ्रांस से आए हुए हैं निष्का एंड शिवनील की वेडिंग के लिए, और उन्हें विश कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी की बहुत ही प्यारी सी जर्नी शुरू हुई है, तो हमेशा खुश रहो, इन्जॉय करो। थैंक यू जी। सुनजी धर्म जी एंड दादी जी भी साथ जुड़ी हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, तो हम सब के गाने एक एक करके चलाएंगे। अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है, किसी के बर्थडे के लिए कोई बात कहनी है, या अपने मूड बताना है, तो हमें बताइए क्या चल रहा है। इन्जॉय कीजिए आपका ये प्यारा सा गाना।

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Pour un petit déjeuner tout en douceur, pour des desserts encore plus savoureux, pour des grillades encore plus croustillantes, et pour aider à combattre une grippe, ce n'est qu'avec du miel Wescoby. Wescoby, le miel 100% pur de l'Australie. Le miel Wescoby, c'est zéro additif, zéro colorant, zéro conservateur, zéro sucre ajouté. Pour 100% de douceur et 100% de bienfait. Wescoby, du bon miel australien 100% pur.
3: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
4: Fin de mois, et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Le pack de 6 bouteilles d'1.5 litres Vital Spring Water à 105 roupies et le kilo de lait entier en poudre Snowy à 222 roupies 95. Pas oublié, Excan to pay te gagne plus points Weave.
5: On est tous Winners!
0: RM2
1: Radio Musty.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, बस अब है फैशन का टाइम। फैशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आज क्या स्टाइल में पहनना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी फेवरेट क्लोथ्स को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो वार्डरोब में आप क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पे आप स्पाइसेस रखते हैं वहाँ से निकालें सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग, यानी कि जिसे कहते हैं क्लोव, आप निकालें, उससे इंसेक्ट्स नहीं आते और आपके जो वार्डरोब है उसमें बैड स्मेल नहीं आती। जो साड़ीज़ हैं वो स्पेशल सूट्स हैं जिसपे बहुत सा वर्क किया हुआ है, जैसे कि मतलब पे बहुत बहुत सारे चीज़ें लगी होती हैं, कांथा वर्क होता है, गोल्डन वर्क होता है, किसी भी तरीके का स्टोन लगा हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसको बहुत टाइट टाइट से नहीं पैक करना है, उन सब को थोड़ा सा हल्का सा बस धो के या जैसे भी आप फ्रेश रखते हैं उसको आयरन कर दीजिए और उसको हल्का हल्का मतलब बिल्कुल बिल्कुल एकदम टाइट टाइट से नहीं पैक करना है, जिससे क्योंकि उनके वो वर्क ख़राब हो जाता है, टूट जाता है और उससे आपकी जो जो कपड़ा है वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये एक स्पेशल टिप है, अगर आपको और भी ज़्यादा करना है तो हर साड़ी को या तो या जो आपका जो भी ड्रेस है, जो जिसको भी आपको रखना है, जिसको चीज़ को सेफ रखना है, आप एक बड़ा सा एक रेड कलर का क्लॉथ लीजिए कॉटन का, उसके अंदर अपनी साड़ियाँ रखें, 3-4 साड़ियाँ रखें, फिर उसमें अच्छे से उसे टाइट से रख दीजिए और

फिर जो बाकी साड़ियाँ उसको रख दीजिए, या आपको कोई सूट रखना है हस्बैंड का या फादर का जो बहुत टाइम तक संभाल के रखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जब भी आपको पहनना है तो आपको 2-3 घंटे उसको थोड़ी सी धूप लगानी है, ये नहीं कि आपने मतलब निकाला और पहना और चले गए, तो आपने धूप लगानी है, उसके बाद आयरन करनी है और फिर आप जाइए आपका देखिए सेट हो जाएगा। आयरन करने से एक तो आपके कपड़े सुंदर ही हो जाते हैं, फ्रेश लगते हैं और उसकी जो बैड स्मेल है वो चली जाती है। तो ये था भैया आपका फैशन टिप और इन्जॉय कीजिए अपने गाने।

0: ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: मौसम भी आज फुल मूड में है, ठंड भी है, थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा सा अच्छा सा एहसास हो रहा है। तो बस जब आपके मैसेजेस आते हैं तो हमारा भी एहसास थोड़ा सा बदल जाता है। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रवीण जी, जो कि अपने हस्बैंड समर को विश करना चाहते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं और बेबी दोनों मिस कर रहे हैं आपको, बस आप ही का ही ख्याल चारों तरफ हमें है। सो स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज। ऐसे ही वाइफ अपने पति का ध्यान रखें या फ्रेंड्स अपने परिवार का या बच्चों का या दोस्तों का, सब एक दूसरे का ख्याल रखें तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इस समय अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाग से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रेडियो मस्ती को इंजॉय कर रही हैं। कह रही हैं अगर रेडियो चल रहा होता है तो कब हम अकेले होते हैं, कभी हम अकेले होते ही नहीं, तो वी आर इंजॉइंग हियर, सो नाइस, थैंक यू सो मच। जना जी भी साथ दे रही हैं और पूरे परिवार के लिए गाना मांग रही हैं, स्पेशली अपनी बेटियों को कह रही हैं कि भैया आप बड़ा तुमने मैच देख लिया, बहुत सारे काम करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, सब कुछ करते हो, तो क्यों ना आज लंच और डिनर तुम्हें दे दिया जाए, तुम पकाओ। अरे भाई ये तो सबसे अच्छा काम किया, बच्चों को ये भी आना चाहिए। तो चलो जना जी, अगर आप कुछ अच्छा स्पेशल सिखाएंगे उन्हें तो वो पक्का 100% सीखेंगे, और हमारे लिए भी ले आना थोड़ी सी कटोरी में डाल के। तो उसके साथ में ही आज है भाई बर्थडे शीतल जी का और उनके हस्बैंड विकी और उनके बेटा नील, मेधा, जीजा जी, मनीष, रिया एंड आर्यन, नितिन, रितिना, मामा संगीता एंड पापा विश कर रहे हैं उनको और बोल रहे हैं कि आपका बर्थडे है, बहुत ही स्पेशल बनाना चाहते हैं हम लोग, बस आपसे यही पूछना चाहते हैं आपको क्या चाहिए। और उनकी वाइफ भी यही कह रही हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप सबका प्यार चाहिए, और स्पेशली कहते हैं कि जब पति इतना बस पूछ ले तो और से ज़्यादा क्या चाहिए होता है, पर फिर भी अगर हस्बैंड दिला रहे हैं तो क्या मना है, बस जाओ कोई शॉपिंग वॉपिंग करके आओ और हमें भी बताना, कोई मैसेज कर देना, कोई फ़ोटो भेज देना कि शॉपिंग में क्या मिला या क्या खरीदा आपने। तो हम आपको भी यही कहेंगे कि आपको बहुत लंबी उम्र हो, जैसे कि आपके हस्बैंड ने कहा, हमेशा खुश रहो, एंजॉय करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, और हमारी पूरी एमबीसी टीम की तरफ से आपके लिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ऑली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 10:54 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अभी के प्रोग्राम यानी कि बॉली ब्रंच के साथ और एंजॉय कर रहे हैं आप बॉलीवुड के गाने। तो चलिए, हमारी एक लिसनर है जिनका नाम है हिना, वो पूछ रही है कि मेरे बच्चे थोड़ा सा पावरलेस फील करते हैं, बहुत थके थके से रहते हैं, तो कोई टिप है जिससे कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए? तो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सिंपल सी होम मेड टिप है। तो आपको यही करना है, आपको लाने हैं 1 kg ड्राई फ्रूट, जैसे कि उसमें मिक्स हो काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता। आप इनको सबको एक थोड़ा थोड़ा करके यानी कि एक एक चम्मच देसी घी लेके, जो प्योर देसी घी होगा, उसमें स्लो फ्लेम में पहले काजुओं को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, उसे फिर बाहर निकाल लीजिए, फिर बादाम को उसी जो थोड़ा सा घी बचेगा उसमें रोस्ट कीजिए, फिर उनको निकाल लीजिए, फिर अखरोट डालिए, फिर उसको भी निकाल लीजिए। आपको लगे कि देसी घी कम लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा और यानी कि एक चम्मच और देसी घी डालिए, फिर थोड़ा सा पिस्ता जो होगा उसको भी रोस्ट कर लीजिए। ऐसे जब 1 kg आपके पास यानी कि 1 kg सारे ड्राई फ्रूट जो है आपके रोस्ट हो जाएंगे, तो सबको मिक्स कर लीजिए और उनको थोड़ा सा हवा लगने दीजिए, जैसे उसको थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर इन सबको क्रश कर दीजिए। एक साथ जब क्रश हो जाएंगे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि उसमें से ये आपके लिए 2 या 3 हफ्ते के लिए बनेगा, 2 weeks या 3 weeks के लिए बनेगा। आपको एक चम्मच लेना है गर्म गर्म दूध के अंदर, उस पाउडर को जो है मिक्स जो आपने बनाया है उसको डालना है, उसको अच्छे से फेंटना है, शेक करना है और बच्चों को बोलना है धीरे धीरे पीते रहे। ये बड़े लोग भी कर सकते हैं, यंगस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, जब बार बार भूख नहीं लगती है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है। यहाँ तक कि अगर बस सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा, जिनको एलर्जी, बॉडी एलर्जी होती है, उनको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से बचना चाहिए, बाकी तो बिल्कुल बढ़िया है। बस बच्चों को दीजिए, बड़े बुजुर्गों को दीजिए, आँखें ठीक रहती हैं, हेल्थ ठीक रहती है और भैया दिल जवान रहता है। तो इन्जॉय कीजिए अपना, और अभी थोड़ी देर पर आप जुड़ पाएंगे संक्षिप्त समाचारों के साथ। तो ये है एक टिप, एक गाना आपके लिए पड़ोसन मूवी से।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा से। करुणा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। आज लिए गए फैसले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संसद में बजट बहस का सार इसी संदेश के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों को लेकर वरिष्ठ नागरिकों की चिंता को वे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उनके अनुसार देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अब चुनाव ये हैं कि या तो समय रहते नियंत्रित और सुनियोजित सुधार किए जाएं, या फिर निकट भविष्य में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया जाए। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भी कहा कि जिस संकट की आशंका आज व्यक्त की जा रही है, उसकी जड़ें पूर्व सरकार के कुछ फैसलों में निहित हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार 2019 के आम चुनावों के बाद वृद्धावस्था पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दिया गया था, जबकि कई विशेषज्ञ रिपोर्टें पहले ही चेतावनी दे चुकी थीं कि ये कदम लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होगा। इस अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने सीएजी लागू की थी, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि इस कोष का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं किया गया। मंत्रिपरिषद ने मेलगोज जेल में 9 दिसंबर को ओंजी सेल्मो की मौत के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर कमियों और लापरवाहियों को उजागर किया गया है। इन सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार एक खास समिति का गठन करेगी, जो आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। विदेशी स्तर पर पाकिस्तान में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से भीतर 35 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल इससे किसी बड़े जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। राजम्बाल रामन बल्कि कौबम्बाई नंबर 2 वाकुआ में 79 साल की 79 ईयर ओल्ड श्रीमती राजम्बाल रामन, श्रीमती राजम्बाल रामन जो माला से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान कौबम्बाई नंबर 2 वाकुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए ट्वामामेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे पास्ट 2 PM। कामपुर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 67 साल की 67 ईयर ओल्ड श्री फोकराज मानिक, श्री फोकराज मानिक जो अशोक से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज से पहर 3:30 बजे इनके भाई

0: सुधीर मानिक के मकान कामपुर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारी जाने रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ हाफ पास्ट 3 PM और नंबर 44 एंड्रियानम स्ट्रीट मोसेल मोरियल नंबर 1 को रोमोडेल में 73 साल के 73-year-old श्री बतमानादेन अमूडों जो माई वैन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी आज सपहर 3 बजे इनके मकान नंबर 44 एंड्रियानम गली मोसेलमा मोरियल नंबर 1 कोहमोडेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही ब्रीले वाले दिफ्रैत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 3 PM शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:09 हो चुके हैं। सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाज़ में आप ये सुन रहे थे पैग पटियाला। क्या बढ़िया गाना था। और इस समय हमारे से जुड़े हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ऐसे होता है ना कि सैटरडे हो, थोड़ा सा काम हो, थोड़ा सा आराम हो और थोड़ा सा म्यूज़िक साथ साथ चलता रहे, तो सारे काम अपने आप होने लगते हैं। अगर म्यूज़िक ना हो तो बड़ा ब्लैंक सा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि अरे भाई आज थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। तो मज़ा लेने के लिए आपको मैसेजेस जो आपने हमें किए हैं हम पढ़ भी लेते हैं साथ साथ। तो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आशा जी, जो कि एक पूरी परिवार के लिए एक गाना सुनना चाहते हैं। मामा कुमारी, नेफ्यू शुभम, ऋषभ, दीदी, आरती, जीजू और राज, जानू फैमिली, जो कि सारे सब लोग साथ दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे से रेडियो मस्ती के बॉली ब्रंच प्रोग्राम को। साथ में विमल, पूजा, पीयूष, नवीन जी भी जुड़े हुए हैं साथ में इंडिया से, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। आशा जी साथ दे रही हैं बनाके से और अपने बेटे का, आज उनका अतुल बेटा है, उसका आज 24वां बर्थडे है और उसे बस ये कह रहे हैं जैसे हर माँ की इच्छा होती है अपने बच्चे को सारी दुआएं और प्रार्थनाएं करने की, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे की लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस करे। तो थैंक यू सो मच आपको मैम कि आप अपने बेटे के लिए इतनी सारी दुआएं मांग रहे हैं और हम भी पूरी MBC टीम उसके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि उनको हमेशा ज़िंदगी में हर खुशी मिले, प्यार मिले और हमेशा सबसे रिस्पेक्ट मिले। राजन रघुपत जी जो कि लंदन से हैं, वो कह रहे हैं जब भी मैं रेडियो मस्ती सुनता हूँ ना मुझे मॉरिशस नहीं याद आता, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा परिवार मेरे साथ ही चल रहा है। सो नाइस। तो मैं भी यही कहूँगी भाई आप सबका प्यार और मोहब्बत और ऐसा ही विश्वास हमें मिलता रहे, हमें खुशी होती है। तो पर हम अतुल के लिए ज़रूर चलाना चाहेंगे और जिनका भी आज बर्थडे है चाहे मैसेज करें या ना करें, पर हम तो कहेंगे हैप्पी बर्थडे।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:22 हो चुके हैं और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट भाई हम सारे तो मैसेजेस नहीं पढ़ सकते, पर एक मैसेज बहुत ही बस दिल को टच करने वाला है। तो एक लिसनर कह रहे हैं कि स्कूल टाइम में तो मैं मस्ती कर रहा था, अब स्टडी का टाइम आया है तो रियलाइज़ हो रहा है सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सा टाइम वेस्ट नहीं किया, पर मैंने टाइम वेस्ट किया, अब मैं क्या करूं, मेरा फोकस नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ बता सकते हैं? तो क्यों नहीं, देर आए सवेर आए भाई, कोई बात नहीं। अगर आपने रियलाइज़ कर लिया है कि आपने टाइम वेस्ट किया है और आपको अब अच्छे से लग रहा है और आप फोकस करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपने पास्ट को छोड़िए, दिमाग में ये बिल्कुल मत लेकर आए कि आपने टाइम वेस्ट किया, ये एक बार आ गया तो अब इसको जाने दीजिए। अब आपको क्या करना है, स्टडी करते टाइम फ़ोन को बिल्कुल दूर रख लीजिए, जहाँ पर ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ पर आपको फ्रेश एयर मिले या धूप थोड़ी सी दिखे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंधेरे अंधेरे में बैठ के पढ़ें, और अपने बेड पर मत पढ़िए, थोड़ा सा टेबल और चेयर जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करके पढ़ाई कीजिए, पूरे परिवार से थोड़ा सा दूर हो जाइए थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि 25-30 मिनट आपको लगेगा, उसके बाद 5-3 मिनट ब्रेक लीजिए, वॉशरूम जाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, आपको लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा अच्छा करूँ, फिर से फ़ोन को दूर कर दीजिए अगर आपको, मतलब फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहना है आपको, फिर थोड़ा सा फ्राइड फूड मत खाइए, हैवी फूड मत खाइए, थोड़ा सा लाइट फूड लीजिए। अगर आपको लगता है 10-15 मिनट 5 मिनट आपको नैप लेना है, दोपहर का टाइम है और आपको लगता है कि थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रख लीजिए, पीनट्स अपने साथ रख लीजिए, थोड़े से मूंगफली अपने, मतलब जो होती है ना ड्राई होती है उसको रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, पॉपकॉर्न थोड़ा सा बना सकते हैं आप, जो आपकी चीज़ें आपके पास ही रखिए और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा खाते रहिए, और साथ में इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि आपको अपने आप

तो इतना कहना है कि हर चीज से मुझे दूर होना है, सिर्फ फोकस करना है सिर्फ पढ़ाई पर। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे से स्टेप्स लेंगे, कंसिस्टेंसी बनेगी और रियली में कंसंट्रेशन होगा आपको। और थोड़ा सा फैमिली को बताइए कि आप थोड़ा सा फोकस होना चाहते हैं, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम तो आपको यही कहेंगे बेस्ट विशेज, पढ़ाई अच्छी कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने गाने। और आपको तो हम यही कहेंगे आप पढ़ाई कीजिए, बाकी सबको करने दीजिए इन्जॉय गानों को। Body Brunch. All right.

0: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.
2: 11:40 हो चुके हैं और लोलो हाइपर की तरफ से आपके लिए भी एक प्यारा सा टिप है। अगर आपने घर में कुछ फ्राई किया है और आपको लग रहा है कि बहुत सी ऑयली स्मेल आ रही है या बैड स्मेल आ रही है, या आपने जैसे कभी नॉनवेज बना देते हैं या कोई सिंक से स्मेल आती है, या कभी ऐसा लगता है कि घर में एक अजीब सी आ रही है, आउटसाइड से आ रही है पर आपको फील अपने घर में हो रहा है, तो आपको सिर्फ सिंपल सा कुछ करना है। तो आपने गैस जलानी है, उसमें एक पैन रखना है, उसमें थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डालना है, उसमें थोड़ी सी लौंग डालनी है, दालचीनी डालनी है और थोड़ी सी मतलब यानी कि हाफ स्पून आपने उसके अंदर डालनी है कॉफ़ी, बस कॉफ़ी डालनी है, उसको बर्न होने देना है, थोड़ा सा जलने दो मतलब तकरीबन एटलीस्ट 3-4 मिनट, तो उसकी जो खुशबू है, इन सारी चीज़ों की खुशबू आपकी जो बैड स्मेल है उसको बाहर निकालेगी और आपको एकदम से कॉफ़ी कॉफ़ी का फील होगा और आपको एहसास होगा कि मतलब एकदम रूम जो है ना और सारा घर जो है बिल्कुल फ्रेग्रेंस हो रही है और फ्रेशनेस फील हो रही है और आपको ये 2-3 मिनट में ही ऐसा फील होने लगेगा। ज़्यादा बेटर होता है कि अगर आपको एयर फ्रेशनर यूज़ करना है तो वो तो बहुत अच्छा है, क्विक है, पर फिर भी अगर आपको एक नेचुरल चाहिए तो ये सबसे बेस्ट टिप है। एंजॉय कीजिए अपने गाने।

अपनी वो दुनिया पे आज रात को सोना नहीं है, शॉट पिलाऊं रोना नहीं है, गल्ला रे है मम्मी डैडी आज ही होले होना जितना हो। अबे बिन बुलाए।

0: is brought to you by McDonald's.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Musti.
3: North. South.
4: 103.5.
3: East. West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से. करुणा जी आपको नमस्कार.
7: नमस्कार पूनम. सभी को नमस्कार. सोमवार 29 जून को सेशल्स अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे करेगा. इस अवसर पर 4 दिनों तक विभिन्न समारोह का आयोजन किया गया है. समारोहों में भाग लेने के लिए सेशल्स के स्टेट हाउस ने कई मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर होंगे. वे समारोहों की मुख्य अतिथि हैं. मॉरिशन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनराम गुलाम भी शनिवार को सेशल्स पहुंचेंगे, जहां वे भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा अफ्रीकी संघ, चीन और रूस के प्रतिनिधि भी समारोह में शरीक होंगे. प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहस का समाहार करते हुए कहा कि आज लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे. वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख करते हुए डॉ. नवीनराम गुलाम ने कहा कि वो उनकी चिंता एवं आशंका को अच्छी तरीके से समझते हैं. उन्होंने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. मॉरिशस के सामने 2 विकल्प हैं. या तो अभी नियंत्रित और आवश्यक सुधार लागू किए जाएं, या फिर भविष्य में गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करने के लिए तैयार हो. डॉक्टर नवीनराम गुलाम ने यह भी कहा कि जिस संकट की आशंका आज व्यक्त की जा रही है, उसकी जड़ें पूर्व सरकार के कुछ फैसलों में निहित हैं. प्रधानमंत्री के अनुसार 2019 के आम चुनावों के बाद वृद्धावस्था पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि यह आगाह किया गया था कि ये कदम लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होगा. आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व SME दिवस मनाया जा रहा है. इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में छोटे एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना. विदेश में पाकिस्तान में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 आंकी गई. फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार. टुकुलेन लोगेतो कन्वेंट स्ट्रीट ओकुले में 78 साल की 78-year-old श्रीमती राजेश्वरी शिवगोबिंद पैदाइश नाम बरम दयाल जो रेणुका से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी बेटी नंदिता शिवगोबिंद के मकान टुकुलेन लोगेतो कन्वेंट स्ट्रीट ओकुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. मोसलमा उबन बाबू में 76 साल के 76-year-old श्री हेमराज मांगो जो क्रिशन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान मुसलमा उबन बाबू से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाए सैंपिया बाबू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. कामपुर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 67 साल की 67-year-old श्री फोकराज मानिक जो अशोक से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थियात सपहर साढ़े

0: तीन बजींद के भाई सुधीर मानिक के मकान कामपुर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर दाह संस्कार के लिए माखे जाने रोजवेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टू डेथ हाफ पास 3 PM और पंजना दिन बल्कि खुट रॉयल बेलेश में 75 साल की 75 year old श्री रसन गम पंजना दिन श्री रसन गम पंजना दिन जो सेल्वा से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे की पत्नी श्रीमती रोजी पंजना दिन के मकान खुट रॉयल बेलेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वाजी लोलीबिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 4 PM शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Love Lounge. RM2. Love Lounge.

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: RM2
3: Radio Musti
2: Love Lounge Pyar Ishq Mohabbat Love Lounge.
4: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आपने ऐसे ही सुना है, आपके साथ सिंपल सी कॉफ़ी भी किक कर देती है। यहाँ पर एक्चुअली सुबह से हमारी पूनम है ना, वो तो कॉफ़ी बना रही थी और अभी माय टाइम लंच बनाने के लिए, राइट पूनम?
5: बिल्कुल, बनाने के लिए जो कॉफ़ी है वो ऐसे किक देती है। और मैंने आज टिप भी दिया था कॉफ़ी।
4: अच्छा, कॉफ़ी के साथ चाय भी था?
5: चाय नहीं था, सिर्फ कॉफ़ी थी।
4: और तब तो परी खुश होने वाली थी अगर वो यहाँ पे होती तो।
5: उसका फेवरेट है ना।
4: राइट, सो वी हैड पूनम फॉर आज का बॉली ब्रंच, दैट वाज फन। इतने सारे अच्छे अच्छे गाने आपने चलाए हैं, एक्चुअली इट मेड द एनर्जी अप लेवल, वो बढ़ गया है।
5: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और मैं तो आपको कहती हूँ कि आपके पास है, अब आपने अपने एनर्जी दिखानी है। और ये सारे हमारे लिसनर्स हैं जो कि खुश होने वाले हैं, क्योंकि सुबह फीफा वर्ल्ड कप ने इनको खुश करा और उसके बाद मैंने, और अब आपकी बारी है। उससे पहले नीलमणि भी थी, उससे पहले रिया भी थी, तो क्या बात है। हमारे सारे आरजेस सबको इंजॉय कराते हैं और बस हम इतना ही कहेंगे, आप सबको खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय कीजिए अपने गाने लव लाउंज के साथ।
4: यस बिल्कुल, यहाँ पे शुरुआत हो गई है फॉर आज का लव लाउंज, जहाँ पर प्यार के साथ ऑफ कोर्स कुछ सुनेंगे, प्यार की दास्तान, कुछ आपकी दिल की बातें को सुनने वाले हैं हम। सो इसके लिए पूरा इंतजार रहेगा, आई बी वेटिंग, आपका इंतजार रहेगा ऑन 5491294 फॉर योर मैसेजेस एंड डेडिकेशन। तो यहाँ पर हंस सुने का साथ अब टिल 2 PM.
2: Love Lounge.
3: RM2.
2: Love Lounge.

0: Love Lounge. Yeah, इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: जब पहली बार तुम्हें देखा तो क्या हुआ, दिल बेकरार हो गया. एक ही नजर में ना जाने क्यों तुमसे प्यार हो गया. देखा जो तुम्हें वक्त वही थम सा गया. दिल का हर कोना बस तुम्हारा नाम कह गया. तो एक नजर काफी है प्यार के लिए, और वही प्यार का संगम हम लेकर आए हैं आज के इस लव

लाउंज सफर में जो चलेगा अब टिल 2 पीएम तक सो जहां पर भी आप जुड़ गए हो इट्स अ वार्म वेलकम आई विश यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून सैटरडे वाला जो दिन आया है और आप लोगों से मुलाकात बिल्कुल होने वाली है प्यार के इस दुनिया में एंड यहां पर हंसनी है जो आपका साथ देने वाली है इससे उम्मीद के साथ कि आज दिल आपका हल्का हो जाएगा अगर दिल कुछ हैवी सा फील हो रहा है इट्स लाइक क्वाइट भारी तो उनको बस हल्का बनाने के लिए वी हैव गॉट म्यूजिक वी हैव गॉट अ लवली सफ़र और आपकी कुछ बातें कहते हैं शेयर करने से जो खुशी है वो दुगनी होती है और अगर है गम है कोई ऐसा दर्द जो आपको परेशान करता है तो शेयर करने से कम पड़ जाता है एंड वी डू बिलीव इन इट अगर आप भी यकीन करते हैं सो व्हाई नॉट शेयर योर दिल की बातें आई बी वेटिंग ऑन 549-1294 जहां पर आपके मैसेजेस आएंगे प्यार को आप याद करेंगे ऐसा ये संगम तो बस हम सेट करने वाले हैं या अब टिल 2 पीएम और यहां पर इशारा है जी हम घूमने जाएंगे आज विल बी हेडिंग टुवर्ड्स शॉडमोर सपोर्ट रेस जहां पे लगेगा द फर्स्ट रेस अगर आप ड्राइव कर रही हो और टीवी नहीं देख पा रही हो एमबीसी द्वारा जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है द लाइव टेलीकास्ट हॉर्स रेसिंग के बारे में अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हैं सो रेड एम एस टी इज़ हेयर टू गेट यू ऑलवेज द लेटेस्ट तो अभी थोड़ी देर के बाद हम बढ़ेंगे शॉ डमास फॉर द वेरी फर्स्ट वन तो यहाँ पर गानों के साथ स्टे वेल कनेक्टेड फॉर आज का लव लाउंज

0: ये चाहा था ना तो नफरत कैसे करें हाँ, वही हंसी की वजह, वही रोने की वजह, वही प्यार, वही तरफ। कैसा है ये प्यार जो है अनोखा, जो है एक्चुअली एक कश्मकश। लेकिन मोहब्बत है ना प्यार है, वही हमारी आशिकी, तो कैसे भूल सकते हैं। So getting you so many reasons प्यार करने के लिए, to stay in love in आज का Love Lounge.
1: Love Lounge.
2: RM2.
1: Love Lounge.
0: Bringing you some great loving songs, प्यार की melodies हम लेकर आ रही हैं, of course to make it beautiful, to make it awesome. अगर आप अभी अपने प्यार को miss कर रही हैं तो बिल्कुल सही सफर में आए हो. This is our Love Lounge जो चलेगा 2 बजे तक, और यहाँ है हंसनी जो आप लोगों का साथ निभाती जाएगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी शेयर करेंगे कुछ आपके दिल की बातें. So अगर अभी आप अपना लंच ले रहे हो, खाना पीना हो रहा है, so enjoy your lunch, enjoy your time. बन अपेक्षी हमारी पूरी टीम की तरफ से.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: और वैसे आपका हक किस पर है, अगर है ऐसी बातें जो शेयर करने से आप खुश हो जाएंगे. एनी हाउ, यहाँ पर ये जो ज़िंदगी हमको मिली है बस जीने के लिए है, खुश रहने के लिए है. और जिन बातों की वजह से हम परेशान होते हैं, दिल उदास रहता है, तो हम उन बातों पर अपने वक्त बर्बाद क्यों करें. हाँ, बस आगे हमें देखना है कि क्या है सब ठीक जो हमारे लिए बना हुआ है, या फिर वो जो हमारे लिए बनी हुई है. राइट, सो ब्रिंगिंग यू क्लोजर यहाँ पे प्यार की इस दुनिया में. एंड अभी टाइम फॉर सम मैसेजेस. हाय, नमस्ते हंसनी, नमस्ते टू यू. आप हो अनीश, वेलकम इन द शो. और आप कॉन्टेबल से हो लिसनिंग टू अस. व्हाट चॉइस, जो रोमांटिक सॉन्ग्स है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसी में एक रोमांटिक सॉन्ग मेरी राधा रानी के लिए. शी इज क्वाइट अपसेट, कुछ नाराज हो गई है, पता नहीं क्यों, कुछ तो हुआ होगा, है ना. तो यहाँ पर बस मनाने के लिए जरिया आप ढूंढ रहे हो, तो अगला जो गाना हम चला दें आप दोनों के लिए, ताकि वो मान जाए और फिर से बातें आप कर ले, फिर से वो प्यार जग जाए. राइट, सो कमिंग गाना आप दोनों के लिए चल जाएगा. एंड वी हैव इट फॉर नंदिनी के लिए, लिसनिंग टू अस. प्यार आ रहा है हंसनी, ये तो अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड साइन. अभी हेलो टू रविश, जो आपके फियांसे है एंड इस समय वो काम कर रही हैं. ही इज़ वर्किंग इन ए पुलिस स्टेशन. सो हैट्स ऑफ फॉर द वेरी नोबल जॉब जो हमारे ऑफिसर्स कर लेते हैं. हमारी सिक्योरिटी के लिए हम सब सेफ रहें, यही बस उनके हाथ में है, वो काम कर लेते हैं इसकी वजह से. राइट, सो कुराज उन सभी ऑफिसर्स को. और अगला जो गाना है वो डेफिनेटली आप सबके लिए.
0: Love Lounge.
2: RM2.
0: Love Lounge.

मिले तो जिंदगी मुस्कुराने लगी, तुम्हारी हंसी दिल को सुकून देने लगी, तेरी हंसी में मेरी पहचान बन गई, मेरी हर खुशी अब तेरे नाम बन गई। ये मैसेज कमिंग फ्रॉम ऋषभ जी। कैसे हो? रली हो कि सब ठीक है? चलिए, प्यार के साथ आपने कुछ भेजा है तो डेडिकेट हम करेंगे ये प्यारा सा अंश आपके लिए। एंजॉय।

0: तेरा नाम लबों पे आते ही मुस्कान आ जाती है, तू हो पास तो हर गम की पहचान छुप जाती है। ऐ मेरी जान, जिससे ही मेरी दुनिया रोशन है, तेरे बिना तो हर पल थोड़ा सा बेचैन है। दिस इज आवर लव लाउंज अप टिल 2 पीएम।
1: Love Lounge. RM2. Love Lounge.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी के साथ। आपको नमस्कार रजनी।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशेल्स की ओर प्रस्थान। वे सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशेल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे, खासकर समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर। इसके अलावा इस दौरे के अंतर्गत डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य कई महानुभावों के साथ भी मुलाकात करेंगे। आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में छोटे एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन के रणनीति में SMEs और स्टार्टअप्स को केंद्र में रखता है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य नवाचारी और प्रतिस्पर्धी उद्यमों की एक नई पीढ़ी तैयार करना है जो रोजगार सृजित करें और आर्थिक विकास को गति दे। नेशनल एजेंसी ड्रग कंट्रोल नाडा की ओर से इस सप्ताह 3 प्रमुख गतिविधियां आयोजित की गई। खतरों का अनुमान और एडिक्शन पर पुलिस के साथ एक प्रशिक्षण सत्र के बाद कल एजेंसी मॉरिशनों की ओर गए। खासकर मॉरिशस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ मुलाकात हुई देश के सामाजिक केंद्रों में। और आज दिन के 2 बजे एजेंसी की तरफ से प्लाजा रोजिल में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष से संबंधित लोग एवं एजेंसियों के लिए ये समझाया जा रहा है कि कार्य किस तरह चलाए जा रहे हैं। विदेश समाचारों में, यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में और रिकॉर्ड तोड़ लू चल रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। रेड अलर्ट देश के 12 प्रांतों में से 8 पर लागू है। उधर वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 920 तक पहुंच गई। 3,300 से अधिक लोग घायल और अन्य कई लोग लापता बताए जाते हैं। राहत कर्मी जीवित बचे लोगों को ढूंढने का काम जारी रख रहे हैं। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। Tukulin, Loreto Convent Street, Okulime, Tukulin, Loreto Convent Street, Okulime, 78 साल की 78 years old की श्रीमती राजेश्वरी शिव गोबिन, श्रीमती राजेश्वरी शिव गोबिन पैदाशी नाम बरमदयाल, जो रेणुका नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ आज दिन के 1 बजे, उनकी बेटी श्रीमती नंदिता शिव गोबिन के घर तुकोलिन लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट ओखुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। स्कूल लेन पेची वैजी सैंपियर में, 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल आजाद गुदव, जो आजाद नाम से भी जाने जाते थे, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के 3 बजे, उनके मकान स्कूल लेन पेची वैजी सैंपियर से उठाकर दफनाने के लिए सैकोस्टॉस का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: Sa grand moment la fin arrivée. Grand final débat climat saison 4. Après plusieurs semaines débat passionné et palpitant, fin arrive les pour connaître qui collait pour vainquer débat climat saison 4. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration de Dr François Gemen, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 27 juin à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBC Sat.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
1: Love Lounge.
0: RM2
1: Love Lounge.

0: Love Lounge. Dear Ishq Mohabbat. Love Lounge.
1: Jia Dharak Jai. That was actually a soulful Gana. क्योंकि इसमें वी कैन फील द इमोशंस डीप डाउन द हार्ट जो दिल महसूस कर लेता है ना. यहाँ पर जिया धड़क जाता है उनके बस होने से. जिया धड़क करता है जब वो पास होते हैं. हमारे सांस में वो बस जाता है. ऐसे में जिया धड़क जाता है. So anyhow, we get you connected, प्यार के साथ. We get you connected with Dil Love, प्यार आशिकी. ये तो है Love Lounge. And we are here लेकर the second hour of the show. कैसा लगा the first hour? जो गाने हम लेकर आए, जो musical melodies हम लेकर आए. I really hope कि आपको अच्छा लगा. और अभी getting some more energy second hour को सजाने के लिए आप लोगों के साथ up till 2 PM. और जो हंसनी है setting the mood in a beautiful way. कुछ रोमांटिक बातें हम कर लेते हैं, कुछ आपकी बातें हम सुनेंगे ना. आपकी दास्तान, आपकी फीलिंग्स, आपके मैसेजेस राइट ऑन 549-1294. सो दिस इज आवर सेकंड आवर जहां पर प्यार के साथ हम सजाने वाले हैं अप टिल 2 पीएम तक आज का लव लाउंज.
0: लव लाउंज
2: RM2
0: लव लाउंज.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत. Love Lounge.
1: एक दिल है जो सिर्फ तेरा इंतजार करता है, हर पल तुझे पाने की फरियाद कर लेता है. वही दिल, एक दिल है जो तुझ में ही बस गया, तेरे बिना तो ये खुद से ही रोट गया है. तो यहाँ पे एक दिल वाला किस्सा था, दैट वाज सुवेनियर्स बैक फ्रॉम द मूवी एक रिश्ता. एंड दैट वाज स्पेशली फॉर सुशीला जी के लिए, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है इन द वर्ल्ड ऑफ लव. क्या बात है जी, यहाँ पे अक्षय कुमार के सुवेनियर्स याद आ गई है. वेरी नाइस, कीप गोइंग. अगला जो गाना है वो आपके लिए एंड पूरे परिवार के लिए भी, सबको हम विश करने वाले हैं अ वंडरफुल डे अहेड. And also I've got the very handsome Yaksh जो यहाँ पर connected है. और धड़क वाला गाना जब सुना कलयुग से, तो wow, that was a very happy feeling जो जा गया है. And Yaksh के लिए definitely एक गाना तो बनता है next. और for Yashvira as well, सुनेंगे कि नाम नहीं लिया तो नाराज हो जाएंगे बिना वजह के. So हम यशवीर को भी याद करना चाहेंगे. आप दोनों के लिए एक beautiful गाना जो हम dedicate करेंगे next. So keep listening. Family time है, प्यार की दुनिया है, जहाँ पर अपनापन है, ये एहसास है, प्यार है. और इसी प्यार को बढ़ाने के लिए ये म्यूजिकल शो लव लाउंज जो चलेगा अब टिल 2 PM. और यहाँ पर गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे फॉर सोनम के लिए. हाय सोनम, कैसी हो आप? घर वापस गई हो फ्रॉम पोर्ट लुइस एंड काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन हमारे गानों को सुनकर ब्रिंगिंग सम मोर एनर्जी टू यू, दैट्स नाइस सोनम. थैंक यू फॉर शेयरिंग. एंड रोमांटिक सॉन्ग्स ये तो बनते हैं हमारे प्यार

अपने लिसनर्स के लिए जो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है. हेलो टू अविनाश, कैसे हो? प्यार के साथ प्लीज प्ले अ ट्रैक फॉर मी एंड फॉर विनाशा के लिए. एक्चुअली शी इज गोइंग बैक होम नाउ, सुबह से काम हो रहा है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल हर आई लव हर वेरी मच और ऑलरेडी आई एम मिसिंग हर. हाउ स्वीट, हाउ रोमांटिक. तो अगर ये है फीलिंग्स तो हमने

और अभी जो पता है कि कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे शादमा सपोर्ट रेस जहां पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस. दिस इज आवर लव लाउंज सेलिब्रेटिंग लव ऑन रेडियो मस्ती. यहां हंसनी है जो आपके साथ बिल्कुल अप टू 2 PM. सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट रेस जो होने वाला है एंड दैट विल बी आज का रेस 3.

ब्यूटीफुल फीलिंग्स के साथ अभी टाइम फॉर मी टू से गुड बाय. थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस कलेक्शन को पसंद किया है. अभी इशारा है ठीक 2 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद दैट विल बी अ स्टार्ट ऑफ अ प्लग एंड प्ले शो. यहाँ पर परी आएगी टू सेट द मूड विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शन एज वेल, सो स्टे वेल कनेक्टेड. जबकि मुलाकात तो हमारी कल होने वाली है सेम टाइम, मिलेंगे कल. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.

0: करूं। RM2 रेडियो मस्ती।
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी। आपको नमस्कार।
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशेल्स की ओर प्रस्थान। सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेने जा रही हैं। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशेल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे, खासकर समुद्री सुरक्षा,

0: ग्लोबलो इकोनॉमी पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर। इसके अलावा इस दौरे के अंतर्गत डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य कई महानुभावों के साथ भी मुलाकात करेंगे। रिश्ते वुमन एम्पावरमेंट सेंटर को बंद कर दिया गया था, पिछले 22 मार्च को फिर से इसे खोला गया। आज यहाँ पर महिलाओं की रचनाओं को सम्मानित करने का दिन है, महिलाओं को अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला, नए उपकरण भी दान में दिए गए। और आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एसएमईज दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का मकसद है रोजगार पैदा करना तथा आर्थिक विकास में छोटे एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना। वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन की रणनीति में एसएमईज को स्टार्टअप्स को केंद्र में रखता है। सरकार का स्पष्ट मकसद है नवाचारी एवं प्रतिस्पर्धी उद्योगों की नई पीढ़ी तैयार करना जो रोजगार पैदा करे और आर्थिक विकास को गतिशील बनाए। नेशनल एजेंसी ड्रग कंट्रोल नाडेक की ओर से आज दिन के 2 बजे से एजेंसी की तरफ से प्लाजा रोजिल में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष से संबंधित लोग एवं एजेंसियां एकत्र हो रही हैं। समझाया जा रहा है कि किस तरह कार्य किए जा रहे हैं। विदेश समाचारों में यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और रिकॉर्ड तोड़ लू चल रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। रेड अलर्ट देश के 12 प्रांतों में से 8 पर लागू, जबकि उत्तरी इलाके और जिलन के दक्षिणी प्रांत में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसमें कहा गया है कि ये उपाय कम से कम शनिवार तक लागू रहेंगे। वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 920 तक पहुंच गई है। 3,300 से अधिक लोग घायल और अन्य कई लोग लापता बताए जाते हैं। राहत कर्मी जीवित बचे लोगों को ढूंढ निकालने का प्रयास जारी रख रहे हैं। कई देशों एवं वैश्विक संगठनों ने समर्थन और मदद का वचन दिया है। और ऐसी भी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल गए। रिक्टर पैमाने पर पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। फिलहाल इस भूकंप से किसी बड़े जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। स्कूल लेन पिछे वैजी सैंपियर में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल आजाद कोदर जो आज़ाद नाम से भी जाने जाते थे, का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के तीन बजे उनके मकान स्कूल लेन पे चिवेशी सैंपिय से उठाकर दफनाने के लिए सेकोस्टांस का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। कपूर स्ट्रीट नुवेल फ्रांस में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री फुकराज मनिक जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके भाई श्री सुधीर मनिक के घर कमपुर स्ट्रीट नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारिजानी रोसवेल के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। रोथ्रॉयल बेलेरिवे सेश में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री रसमगुम पंजानादेन जो सिल्वा नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनकी पत्नी श्रीमती रोजी पंजानादेन के घर रोथ्रॉयल बेलेरिवे सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: So well friends, Saturday afternoon, 2:09, it's time for your plug and play. मैं हूँ परी आपके साथ. I do hope you're enjoying your weekend. वैसे दोस्तों, weekend तो होता ही है enjoy करने के लिए. इसको थोड़ा सा और happy हम बना रहे हैं with some beautiful happy songs. परी का साथ रहेगा till 4 PM और साथ दे रहे हैं आप भी. So well, रहेगा इंतजार आपके messages, आपके dedications. 5499-1294. Well, अभी के लिए we have this beautiful track. हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम द फिल्म बार बार देखो अरमान मलिक, नीति मोहन की आवाजें आपके सैटरडे आफ्टरनून को और भी खास एंड स्पेशल बनाने हम हैं यहाँ बिकॉज साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती. लाइफ में मस्ती, लाइफ में मैजिक.

So well friends, beautiful songs आपके लिए और साथ दे रहे हैं आप on RM2 Radio Masti. It's your Saturday afternoon show जहां पर लेकर आए हैं your plug and play. अभी के लिए we have this beautiful song and कुछ गाने ऐसे जो हमेशा से रहते हैं दिल के पास. कभी कभार कुछ गाने हम बहुत टाइम बाद सुनते हैं लेकिन गाने ऐसे होते हैं जो आपके मूड को सेट कर ही देते हैं. Today is Saturday afternoon और हाँ कोशिश यही है that इन गानों के साथ आप भी हमारे म्यूजिकल हमसफर बने. We have Roshni enjoying the songs. Thank you so much, dear. गाना होगा आपके नाम और साथ ही साथ यहाँ पर we have special wishes. So happy birthday wishes. ये है for Tisa and Ava. Both twins हैं और 6 साल के हुए हैं. उनके लिए wishes हैं from Ramisa family of Balo and enjoying their birthday. और साथ ही उनके लिए special wishes. So loads of love to you twins. और ऐसे ही आपके लिए good wishes and बहुत सारा प्यार. ये है हमारे पूरे Radio Masti team की ओर से. परी का साथ इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बजट पर अपने समिंग अप को पेश करते हुए कहा कि आज लिए गए फैसले देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करेंगे. वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि वे उनकी चिंताओं और आशंकाओं को अच्छी तरह समझते हैं. उन्होंने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. मॉरिशस के सामने दो विकल्प हैं, या तो अभी नियंत्रित और आवश्यक सुधार लागू किए जाएं, या फिर भविष्य में गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़े. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशल्स के उपस्थान में सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेंगे. सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक कैमिनी ने उन्हें आमंत्रित किया था. इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे. मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर. इसके अतिरिक्त इस दौरे के अंतर्गत डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य कई महानुभावों के

0: साथ भी मुलाकात करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे अपने मित्र और सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक एमिनी के निमंत्रण पर सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा से पहले जारी प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। रिश्ली वुमन एम्पावरमेंट सेंटर को बंद किया गया था और पिछले कुछ महीनों से इसे फिर से खोल दिया गया है। आज यहाँ पर महिलाओं की रचनाओं को सम्मानित करने का दिन रहा, महिलाओं को अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इसके अलावा नए उपकरण भी दिए गए। आज रिफॉर्म पार्टी ने हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। कई विषयों पर चर्चा हुई, पब्लिक बीचेस, मैटरनिटी लीव, मेंस्ट्रुअल लीव आदि। पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया कि समुद्र तट अच्छा समय बिताने का एक स्थल है और ये सभी मॉरिशनों के लिए है। विदेश समाचारों में यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में और रिकॉर्ड तोड़ लू चल रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। रेड अलर्ट देश के 12 प्रांतों में से 8 पर लागू है। और वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 920 तक पहुंच गई है। 3,300 से अधिक लोग घायल और अन्य कई लोग लापता बताए जाते हैं। राहत कर्मी जीवित बचे लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश जारी रख रहे हैं। कई देशों एवं वैश्विक संगठनों ने समर्थन और मदद का वचन दिया। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। कंपूर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री फोकराज मनिक जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके भाई श्री सुधीर मनिक के घर कंपूर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मार जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। रोथ्रॉयल बेलेरिवेसेश में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री रागा सागम पांजानादेन, श्री राजा रानसंगम पांजानादेन, श्री रानसंगम पांजानादेन जो सिल्वा नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनकी पत्नी श्रीमती रोजी पांजानादेन के घर रोथ्रॉयल बेलेरिवेसेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वा इलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 4:00 PM। शोक मरुबेन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: दिल से बॉलीवुड ये है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती। कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों, बिकॉज आज है सैटरडे आफ्टरनून। साथ देने के लिए शुक्रिया एंड वार्म वेलकम। 3:09 और आज हमारा स्टूडियो काफी भरा भरा, आप सुन रहे हैं इतनी सारी आवाजें क्योंकि आज यहाँ पर काफी हमारे कलीग्स हैं जो आए हुए हैं अपने सैटरडे को एंजॉय कर रहे हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आपके सैटरडे को भी हम बनाना चाहते हैं खास एंड स्पेशल। सो कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं। मैं ऊपर ही आपके साथ, इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस, 5499 1294
1: This is a Rishi Rich Refix.

0: So well, that was a beautiful song, Afimi, and हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी listeners. I do hope you're enjoying your Saturday हमारे इन गानों के साथ. Enjoying the songs और ये है from Srishta and baby Thavishan हमारे साथ connected हैं आप all the way from UK आपने भेजा है प्यार that's really sweet so Thavishan आपके लिए प्यार and for love for you Srishta thank you so much इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ने के लिए on the waves of RM2 Radio Masti
1: RM2
2: Radio Masti
1: feel the musty
0: So for now, we have Ritesh, Shama, Rani, Tanish, Adesh, Nishtha, Jayashree, Radha, Vashish, Yushra, Yashna, Shakil and Sabhi Jeevan Parivar Bell aise humara saath de rahe hain aur Radio Masti ke saath jude hue hain aap. We also have humari pyari si Rekha ji, aaj celebrating your birthday. So happy wala birthday aapko on 27th of June. So aapke liye pyar and special wishes. Chaliye thodi hi der mein we'll play a beautiful song aapke naam. Saathi hai beta Ansh, Pombonje se humara saath de rahe hain wo bhi. और चलिए दोस्तों यहाँ पर ज्योति का टंगरी की आवाज एंड विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर रेसेस लेकर चलेंगे आपको शॉन द मास कनेक्टेड रहे आप ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती मैं हूँ परी आपके साथ टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले

0: Plug and Play.
1: RM2.
2: So, well, friends, it's your plug and play. It's 3:43 और मैं हूँ परी आपके साथ एंड रेसेस के बाद once again म्यूजिकल प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पर जारी है. So, आपके सैटरडे को हम बनाना चाहते हैं खास एंड स्पेशल और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं यले शाम ऑफ सुरिनाम. उनका पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो हैव अ वंडरफुल टाइम यलेश एंड नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली. अब्दुल अंसारा बानू आपका भी वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. गाना होगा आपके नाम एंड वीना जगिस्सा फ्रॉम बेलवी मोहल हमारा साथ दे रही हैं. आप कहते हैं गाना हो जाए फॉर परिवार. आपकी दोनों बेटियां दामाद और नाती नातिन सभी MBC टीम के नाम भी. थैंक यू सो मच मीना जी, दैट्स रियली स्वीट. आप इतने प्यार से सभी को याद कर रही हैं. सो गाना हम जरूर डेडिकेट करेंगे फॉर यू एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस. साथ ही यहां पर वी हैव अ स्पेशल डेडिकेशन हैप्पी बर्थडे विशेज

ये है फॉर सुमेधा गोवर्धन. अब है हमारे साथ कनेक्टेड एंड इट्स योर बर्थडे आज. सो विशेस आपके लिए फ्रॉम ब्रदर अशोक, मनोज, संजय, राजेश, सिस्टर्स है बिंदु, संता, सुरेखा, नीता एंड सभी गोवर्धन परिवार लेकर आए हैं आपके लिए गुड गुड विशेस. सुमेधा गोवर्धन सिबनौत अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आज एंड टू एवरीवन हु सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे आज लोड्स ऑफ गुड विशेस एंड सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. तो चलिए जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं साथ ही साथ आज हमारी जो एक डियर लिसनर है हमारी प्यारी सी रेखा जी, शी इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज ऑन 27th ऑफ जून. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू, अ बिग फैन ऑफ कुमार सानू. जो भी कुमार सानू के फैंस है हमारा साथ दे रहे हैं, चलिए चल पड़ा ये गाना आप सभी के नाम, परी का साथ, प्लग एंड प्ले ऑन रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: So well friends, with this beautiful track, it's time for Pari to say goodbye. आ रही है दिव्या लेकर कुछ और प्यारे गाने आपके लिए. And Mama Deepa, Reshma, Papa Bobby, happy birthday, Ojaswi, love you. और ये है उनके लिए special wishes from Nana, Nani, सभी परिवार की ओर से बहुत सारा प्यार and good good wishes. हम भी wish करना चाहेंगे happy वाला birthday आपको. साथ ही यहाँ पर कुमार देवीचन साथ दे रहे हैं आप. Already at Seaside and dedicating गाना for Papa Shyam Devichan of Paybay. उनके लिए बहुत सारा प्यार and special wishes. और चलिए दोस्तों, हमारे अपाडू परिवार वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So wishing you a wonderful time. कुछ प्यारे गाने ऐसे ही चलते रहेंगे आपके नाम. साथ देने के लिए शुक्रिया. परी साइनिंग ऑफ. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर प्लग एंड प्ले ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशल्स की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। वे सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक क्लेमेनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे, खासकर समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर। रिश्यू विमेन एम्पावरमेंट सेंटर को बंद किया गया था, इसे पिछले 22 फरवरी को फिर से खोला गया। आज यहां पर महिलाओं की रचनाओं को सम्मानित करने का दिन है। महिलाओं की को अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। नए उपकरण भी दान में दिए गए। और आज रिफॉर्म पार्टी ने हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। कई विषयों पर चर्चा हुई, पब्लिक बीचेस, मैटरनिटी लीव, मेंस्ट्रुअल लीव आदि। पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया कि समुद्र तट अच्छा समय बिताने का एक स्थल है और ये सभी मुरशनों के लिए है। विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे भी अपने मित्र और सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक क्लेमेनी के निमंत्रण पर सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा से पहले जारी प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आगे आरिजी, नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Music, Tactic
4: Attack. RM2, Radio Musty.

बिल्कुल, ये लम्हा हमारा और आपका ही है और हमारे और आपके बीच का है। शाम के 4:08 हो चुके हैं और इस गाने के बाद ऑफ कोर्स वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द रेसेस, सो यू स्टे राइट कनेक्टेड। दिव्या का साथ इन योर म्यूजिक टक टक आटक अभी से लेकर टिल 7 PM।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बिल्कुल स्पिरिट ऐसी होनी चाहिए, अकेले हैं तो क्या गम है भाई, अपने कंपनी को आप खुद ही एंजॉय कीजिएगा। और कहते हैं ना कि एट टाइम्स यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, और कहते हैं कि ढूंढने से खुदा मिल जाता है लेकिन अच्छा और सच्चा दोस्त बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है तो उनको बहुत ही संभाल कर रखिएगा। चलिए शाम के 4:23 हो चुके हैं और हम तो आपके अच्छे और सच्चे वाले दोस्त हैं, इसलिए तो एक गिफ्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। यस यस, सैटरडे है और वीकेंड में गिफ्ट ना दे ऐसा तो बिल्कुल

0: हो नहीं सकता. तो चलिए यहाँ पर आपको गिफ्ट देने के लिए एकदम तैयार है और गिफ्ट हासिल करने के लिए यू हैव टू प्ले विद अस. और हम खेल रहे हैं मिस्टिक वर्ल्ड के साथ. अगर आपकी जीत होती है तो आपको मिलता है ₹500 का गिफ्ट वाउचर एंड ये वाउचर आपको बाय पोस्ट पहुंचा दिया जाएगा. सो चलिए अभी के लिए कुछ और डिटेल के साथ आपको हम कुछ और जानकारी देंगे बिल्कुल. लेकिन इससे पहले गेम खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यू हैव टू टेल मी अगला गाना जो आप सुनेंगे उसमें कौन सी एक्ट्रेस पिक्चराइज थी. अगला गाना जो आप सुनेंगे यू हैव टू टेल मी कि इस गाने में कौन सी एक्ट्रेस पिक्चराइज हुई थी. वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294. आपको बस ये बता देते हैं कि आईडी जो नाम है आपके आईडी कार्ड में उसी तरीके से आपको अपना नाम भी भेजना है क्योंकि देखिए ये बाय पोस्ट आप तक पहुंचा दिया जाएगा वाउचर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर आईडी कार्ड नेम और फुल एड्रेस के साथ भी आपको सही जवाब देना है. अगर आप पूरा नाम और पूरा पता नहीं भेजते हैं तो आपका नाम हम लकीरों में शामिल नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज़ डू सेंड अस द राइट आंसर विद योर फुल नेम एंड योर फुल एड्रेस. ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट कि अगला गाना सुनना है और हमें बताना है कि इस गाने के अंदर कौन सी एक्ट्रेस पिक्चराइज हुई थी. ऑल द बेस्ट.
1: म्यूजिक टक टक आता है. RM2 रेडियो मस्ती.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हाय, क्या बात है। ऐसे ऐसे गाने आप लोग सुनेंगे ना तो सच में आपको ऐसा ही लगेगा कि आप सदके जावा। शाम के 4:30 बज चुके हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ एंड थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए, हमने पूछा था कि इस गाने में जो एक्ट्रेस पिक्चराइज हुई थी उनका नाम क्या है, एंड द राइट आंसर इज करीना कपूर। यस, बेबो वॉज पिक्चराइज इन दिस गाना एंड इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी क्या लव स्टोरी है। एंड चलिए, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए, बट वी हैव आवर लकी विनर एंड हम विश करेंगे मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विदुषी बोगन of Rochdale. Congratulations to you, Vidushi. You are our lucky winner and aapko mil raha hai, of course, 500 rupaye ka gift voucher Mystic World की तरफ से, और ये गिफ्ट वाउचर आपको पोस्ट किया जाएगा। एंड अगर आप कोई परफेक्ट गिफ्ट आइडिया ढूंढ रहे हैं सो mysticworld.mu इज द राइट प्लेस एंड इट्स द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। डिस्कवर आवर एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टनिंग होम डेकोर। और आपको हम बता देते हैं कि mysticworld.mu हैज एग्जैक्टली व्हाट यू लुकिंग फॉर। विजिट आवर वेबसाइट टुडे या फिर आप फोन भी कर सकते हैं ऑन 5880765258076522। सो वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू विदुषी। एंड चलिए, ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू और आपके पूरे फैमिली के नाम।
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Well, already 542, actually 5 नहीं बल्कि 442. And चलिए, actually देखा जाए तो ऐसे ही वक्त तेज़ी से निकलता जाता है, इसलिए थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 बजे हैं कि 5 बजे हैं. बस ये उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बस काश ये वक्त थोड़ा सा ठहर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. लेकिन पॉसिबल बिल्कुल यही है कि हम वक्त के साथ साथ चले और आप लोगों के लिए जितना हो सके खूबसूरत गाने समेटने की कोशिश करें जल 7 PM. सो थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. इट्स अ वंडरफुल सैटरडे आफ्टरनून जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM. एंड चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. एंड जहां से भी साथ दे रहे होंगे, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड.

तेरे बाहों के चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसु सवाल इन आंखों के आई

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हाय हाय, ये सर्दियों का मौसम और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रही हैं और यही कह रही है कि इस सर्दी वाले मौसम में खूबसूरत गाने एंजॉय करने का बहुत ही मतलब आपको अच्छा लगता है। और साथ में आपको हम यही कहेंगे कि सर्दी के मौसम में जितना हो सके ना आप टैप वाटर को उबाल कर ही पिए। और टाइम टू टाइम जो विंटर सीजन में बारिश होती है, दिस इज़ रियली रियली समथिंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि जब ज़ोरों की बारिश होती है और ऐसे में हम टैप वाटर पीते रहते हैं और इसकी वजह से कभी कभी हमारा जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकता है। सो जितना हो सके पानी को बॉयल करके ही पिएगा। और साथ में अगर आप लोग इस वक्त कनेक्टेड है, मे बी आप लोग चाय की चुस्कियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं हमारे खूबसूरत गीतों को। सो थैंक यू सो मच जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। चाहे आप काम पर हैं, ड्राइव कर रही है, रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, या फिर फ्राइडे की तरह सैटरडे को भी बहुत सारे लोगों के प्लान्स बनते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप घूमने जाएंगे बाद में। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती, एंड हर एक आपकी खुशी में और आपके गम में भी हमेशा हम शामिल होते रहते हैं। सो डोंट फॉरगेट, इट्स योर म्यूजिक टकटकाटक जहां पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM। यस, 7 PM तक हमारा और आपका साथ है, ऐसे ही साथ साथ रहेंगे। और डोंट फॉरगेट, डू लेट अस नो कि आप किस तरीके से अपने इस सैटरडे आफ्टरनून को स्पेंड कर रहे हैं ऑन 5499-1294।
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

गाने में दो अजनबी हैं और गाने में यही कहा जा रहा है कि दो अजनबी पता नहीं कहां जा रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जिंदगी का कंक्लूजन इस गाने से निकाला जा सकता है, मतलब जहां जिंदगी ले जाए उधर आपको चलते चले जाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ना मंजिल का ठिकाना होता है ना सफर का ठिकाना होता है, लेकिन फिर भी हम चलते चले जाते हैं। अब क्या ही करें, जब गुड म्यूजिक का साथ होता है तो जब कुछ सोचता नहीं है तो गुड म्यूजिक के सहारे हम फ्लो में बहते चले जाते हैं, और हम तो चाहते हैं ही कि आप ऐसा बिल्कुल करें। सो एक बार फिर से वी हैव सम गुड म्यूजिक फॉर यू टिल 7 PM। शाम के 5:27 हो चुके हैं, दिव्या का साथ अभी से लेकर 7 तक इन म्यूजिक टक टक टक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक टकटकाटक
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: ऑलराइट, कुछ फैशन टिप्स जरूर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और आज हम बात करेंगे, एज यूजुअल हमेशा हम या तो मेकअप के बारे में बात करते हैं या फिर हेयर स्टाइल के बारे में या फिर हम आउटफिट और उनके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो आज भी हम कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब भी आप कोई ऑलिव कलर का आउटफिट चूज़ करें तो उसमें ब्लैक तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बट दिस इज़ द एक्सपेक्टेड लुक। अगर आप डिफरेंट लगना चाहते हैं तो ऐसे में आप ऑलिव कलर के साथ कोई भी ब्लश पिंक एक्सेसरी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लश पिंक कलर के जूते और आपका क्लच और आप के इयररिंग्स, व्हाइट नॉट, इट लुक्स वेरी वेरी अमेजिंग। और कभी भी आप कैरामेल कलर का कोई भी आउटफिट चूज़ कर रही हैं या फिर इट्स ऑल्सो नोन एज न्यूड, न्यूड कलर के साथ वाइट इज़ ऑलवेज द एक्सपेक्टेड, लेकिन कभी आप न्यूड कलर के साथ एमरॉल्ड को ट्राई कीजिए। एमरॉल्ड का मतलब ग्रीन है और इट्स अ डार्क ग्रीन और ये बहुत ही क्लासी लगता है और इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। अगर आप न्यूड के साथ एमरॉल ग्रीन को चूज़ करते हैं, आपका क्लच या फिर आपके जूते या फिर आपके इयररिंग्स, और बिलीव मी इट लुक्स वेरी वेरी क्लासी। लैवेंडर कलर के साथ या तो आप सिल्वर एक्सेसरीज को डाल सकते हैं एज कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स कलर कॉम्बिनेशन, या फिर आप लैवेंडर कलर के साथ ब्राउन, यस कॉफी ब्राउन कलर के एक्सेसरीज भी ले सकते हैं। आपका क्लच, आपके जूते या फिर आपके इयररिंग्स, इट लुक्स अमेजिंग। कभी भी आप कोई भी पार्टी में जा रहे हैं और आप को एक पार्टी ड्रेस डालना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जस्ट ट्राई टू रॉक योर लुक एंड ट्राई टू रॉक द कलर्स एंड इट लुक्स वेरी वेरी अमेजिंग।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Music, Tak Tak Tak.
2: RM2, Radio Musti.

ऑलराइट 5:53 हो चुके हैं और चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर. बिल्कुल हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है एक बार फिर से आफ्टर द समाचार बुलेटिन टिल 7 PM. सो स्टे वाइड कनेक्टेड.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
5: छह बजे है नमस्कार समाचारों में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार राष्ट्रीय सभा में कल रात बजट बहसें समाप्त हुई अपने समिंग अप में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने बजट 2026-2027 में लिए गए फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार पिछली सरकार की गलतियों और उससे हुए नुकसान को सुधारने का प्रयास कर रही है उनके अनुसार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसले जरूरी है अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानवाधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है सेशल्स गणराज्य सोमवार 29 जून को अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाएगा ये राष्ट्रीय समारोह लगभग 4 दिनों तक चलेगा इस खास मौके के लिए सेशल्स के स्टेट हाउस ने भारत समेत कई मित्र देशों को आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम इन समारोह में शामिल होने के लिए आज शाम मॉरिशस से रवाना हुए विदेश में वेनेजुएला में राहत कार्य जारी है जहां गुरुवार को पेश आए दो विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 पार कर गई है और अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय सभा में कल रात बजट बहसें समाप्त हुई अपने समिंग अप में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने बजट 2026-2027 में लिए गए फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार पिछली सरकार की गलतियों और उससे हुए नुकसान को सुधारने का प्रयास कर रही है उनके अनुसार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसले जरूरी है साथ ही उन्होंने बजट के मुख्य कदमों उनके लागू होने और आने वाली के लिए सरकार की कटिबद्धता की भी समीक्षा की
6: En ouverture de son summing up, le Dr Navin Ramgoolam est revenu sur la situation économique héritée par son gouvernement. Il a affirmé que ce budget de continuité vise à corriger les déséquilibres laissés par l'ancien gouvernement, d'où, selon lui, des décisions difficiles mais nécessaires pour préserver l'avenir.
7: Growing fiscal pressures, rising debt obligations, broken down engines of growth and galloping inflation. 26.9 billion rupees just on interest. Nearly 27 billion just on interest because of the mess they did. Faced with these challenges, we had no choice. Malheureusement, Madame la Présidente, nous avons subi les affres d'une stratégie de déni chez certains qui ne veulent pas voir la vérité en face. Et de démagogie chez d'autres. Ils ne veulent pas voir les données objectives, les finances, la situation du fonds de pension et le risque de faillite à court, moyen et long terme. C'est pourquoi

0: जश्न का माहौल बना हुआ है और लोग 29 जून 1976 की यादें ताजा कर रही है।
1: सेशल्स द्वीप समूह में 1,00,000 से कुछ ज्यादा निवासियों के साथ माहे टापू विविध आबादी वाली जगह, ज्यादा से ज्यादा विदेशी कामगार, ये ही पर माहे टापू में प्रमुख सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। शुक्रवार के दिन केंद्रीय शहर में अभी मुख्य सड़कों पर गणराज्य का झंडा गर्व के साथ लहराता दिखाई दिया। अभी भी यहाँ विगत की खुशबू। ऐसे कई स्मारक हैं, स्थल हैं जहाँ पर अंग्रेजों के निशान हैं। बुजुर्ग लोग जब इन्हें देखते हैं तो आज भी भावुक हो जाते हैं। 29 जून 1976 को आज़ादी मिली थी। जॉन क्रिस्टोफ बॉबिये ज्यादातर समय एवेन्यू डी लिंडेबॉन्डोंस में एक बेंच पर बिताते हैं। मेट्रो सर्विसेज के ये अवकाश प्राप्त व्यक्ति स्वतंत्रता के दिन स्टेडियम में थे। उनकी तरह अन्य लोगों को भी वो अहम घड़ी याद है, इतिहास अंकित, जिसे बयां करना चाहिए।
2: Comment on appelle les parents de Tina Mankani Valo Ville, comme c'est chez moi, oui, mon très fier. Et moi, moi, moi, j'ai mon kit qui est patriote, qui est tout pour sa pays, sa ville. Mon pari vous donne mon avis pour sa ville.
3: C'est le souvenir, regardez, c'est les pavillons Yuyon Jack qui descendent, tu vois. Oui, tu comptes.
4: Et 50 ans après ça comment où tout vous pays il progressé
3: quantité développement mais seulement mon souhaité qu'il y ava doublé quand nous arrivé là
1: 50 वर्षों की प्रगति जिसे विगत की पीढ़ी और आज की पीढ़ी अधिक आगे बढ़ते देखना चाहती है।
5: I would aspire for my country to have more development, a lot more activities for the youth. As we know that Seychelles has a problem with drugs. So I think if there was more activities for the youth, which I think slowly we can do that so that the children will stay away from that negativity.
6: I want my country to be like more populated, bigger, more advanced, like with technology and more clean, like less pollution. Seychelles had to fight a lot to gain independence, so when we celebrate it makes everybody feel proud.
7: I'm very proud. My country celebrating 50 years of independence.
1: भाग्य रात्रि से कुछ घंटे पूर्व ये स्वर्ण जयंती सेशल्स वासियों को याद दिलाती है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं था, एकजुटता से ही प्राप्त एक जैसी ही किस्मत।
0: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोहों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य मेहमान है। वे आज 2 दिवसीय औपचारिक दौरे पर वहां पहुंचे। उनके स्वागत के लिए सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक अमिनी हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इस दौरे के अंतर्गत भारत और सेशल्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, खासकर समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में। जैसे कि हम बता रहे थे, अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानव अधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रसभा में अटॉर्नी जनरल ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में बात की। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
8: मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ भविष्य की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए कानून बनाए जाएंगे। सरकार अस्थायी आरोपों यानी प्रोविजनल चार्जेस से जुड़े मामलों पर एक नया आपराधिक न्याय विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले मौजूदा व्यवस्था के तहत लागू प्रोविजनल चार्ज समाप्त कर उनकी जगह नई प्रणाली लाई जाएगी, लेकिन इसमें अदालतों की निगरानी की व्यवस्था बरकरार रहेगी। दूसरा, गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए चरणबद्ध न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किया जाएगा। और तीसरा, छोटे आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानूनी ढांचा लागू किया जाएगा। एक अन्य प्रमुख सुधार मानवाधिकार आयोग से जुड़ा है। इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा ताकि ये मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

0: इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने से जुड़े प्रावधान भी शामिल होंगे। क्रिमिनल कोर्ट में संशोधन सदन में पेश किए जाएंगे ताकि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान किया जा सके, जिनमें वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या फेमिनिसाइड शामिल है। इन सुधारों के माध्यम से कानून ये स्पष्ट करेगा कि वैवाहिक संबंध किसी भी प्रकार की यौन हिंसा की अनुमति नहीं देता और किसी महिला की उसके लिंग के कारण हत्या को उसी रूप में पहचाना, नामित और दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्ण वेतन सहित मैटरनिटी लीव को 16 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया जाएगा। मॉरिशस इस कदम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उन देशों की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो रहा है जो इन मानकों को पूरा करती हैं। ये आपत्ति उठाई गई है कि ऐसी सुरक्षा उपायों से नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचाएंगे, लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि केवल इस संभावना के आधार पर किसी महिला को नौकरी से वंचित करना कि वह कभी माँ बन सकती है पहले से ही मॉरिशस में अवैध है। अटॉर्नी जनरल ने मासिक धर्म चक्र से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी स्पष्टता प्रदान की और मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के संदर्भ में यही सिद्धांत लागू होता है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो महिला वास्तविक चिकित्सकीय कारणों से सक्षम नहीं है उसे वेतन सहित अवकाश मिलना चाहिए। ये उसे कमतर कर्मचारी नहीं बनाता बल्कि उसे कार्यस्थल पर बनाए रखने और समान अवसर देने का माध्यम है। ये व्यवस्था निश्चित रूप से उचित मेडिकल प्रमाण पत्र पर आधारित होगी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। सुधारों की सूची लंबी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन और नेशनल क्राइम्स एजेंसी की स्थापना, उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से वाहनों की जब्ती संबंधी प्रावधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने वाला नया कानून भी एजेंडा में शामिल है।
1: कुछ समय तक बंद रहने के बाद 22 मार्च को विश्व वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर फिर से खोला गया। आज से ये केंद्र सुचारू रूप से कार्यरत हुआ है। वहाँ एक प्रदर्शनी के जरिए प्रशिक्षित की गई महिलाओं का कार्य दिखाया गया और नए उपकरण भी बिठाए गए। देश के बुजुर्ग जीवन भर समाज के अहम सदस्य बने रहते हैं। रिटायर्ड होने के बाद ज़्यादातर बुजुर्ग ऐसे केंद्रों और संगठनों में शामिल होते हैं जहां मेल मिलाप, समुदाय की भावना और अलग अलग गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। सैंपियर का ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन इसी प्रकार का एक केंद्र है जो इस साल अपनी गोल्डन जुबिली यानी स्थापना के 50 साल मना रहा है। ज़्यादा जानकारी रजनी बेकर के साथ।
2: इन बुजुर्ग लोगों के लिए सक्रिय जीवन बदल गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों तक काम करते रहे, अपने परिवार को संभालते रहे। ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन में 1300 सदस्य हैं। 1974 में ये कायम हुआ। इसकी सीट सैपिया में है। वे सप्ताह के दिन रोज यहाँ मिलते हैं और योगा करते हैं, कुछ पिताओं खेलते हैं, क्विज भी करते हैं और धर्मों एवं संस्कृतियों पर भी बात की जाती है।
3: Je suis partie de la Commission nationale du sport féminin. Je me demande cours d'exercice. Faire d'exercice pour nous aînés, c'est un plus, c'est une chose qui est bien motivant et nous trouve avec sourire.
4: Je me prends pas devant une compétition qui est là ici, ben, l'activité qu'il fait, il détend tout en même temps. On passe un moment avec mes camarades, tout ça.
5: Nous, nous avons envie qu'il commence à 3e âge, après qu'il y ait tant d'années de passé dans notre enfance, dans notre jeunesse, etc. Il faudrait que nous reste bien. Nous avons plusieurs activités, santé, danse, yoga, Scrabble.
2: राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने बुजुर्ग लोगों के समुदाय में व्याप्त एकजुटता की सराहना की।
6: C'est eux qui préservent bonne valeur et transmettent sa bonne valeur là à la nouvelle génération. Et moi pense que nous besoin rendre hommage à tout moment.
2: 50वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया गया। अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।
1: ड्रग्स का फैलाव रोकना, परिवारों को बेहतर मार्गदर्शन देना और प्रभावित लोगों की मदद करना, यही मकसद है रोकथाम, इलाज और पुनर्वास सेवाओं के लिए आयोजित प्रथम नेशनल विलाज प्रोग्राम का, जो आज रोजेल प्लाजा में लगा। सरकारी संस्थाएं, एनजीओ और एम्बुलेंस आदि के

विशेषज्ञ वहां उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी देने के लिए एकत्र हुए थे। और 1986 में स्थापित यागोश के रिहाब सेंटर ने मुख्य रूप से नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने, लत से जूझ रहे लोगों की मदद और उन्हें समाज की मुख्यधारा से में वापस लाने के वास्ते संघर्ष किया है। ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सेंटर ने लोगों की बातें सुनने और उन्हें सहारा देने और उनके जीवन को फिर से संवारने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि किसी भी लत के पीछे न सिर्फ एक परेशान व्यक्ति बल्कि अक्सर एक ऐसा परिवार भी होता है जो खुद को बेबस महसूस करता है। विदेश में वेनेजुएला में राहत कार्य जारी है, जहां गुरुवार को पेश आए दो विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 पार कर गई है। 3,300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जाते हैं, हज़ारों लोग अभी भी लापता है। और सेनेगल की उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। कल रात इराक पर शानदार जीत के बाद लायंस ऑफ टरंगा 2026 वर्ल्ड कप की दौड़ में बने हुए हैं और ये सब 5-0 की निर्णायक जीत की वजह से हुआ है। इस जीत ने तीसरे स्थान पर रहने वाली सबसे अच्छी टीमों में से एक के तौर पर राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के उनके सपने को जिंदा रखा है। फुटबॉल विश्व कप ग्रुप स्टेज के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, जहां अर्जेंटीना आसानी से क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है, वहीं पुर्तगाल और कोलंबिया टॉप स्पॉट के लिए मुकाबला करने को तैयार है। इंग्लैंड अपना काम पूरा करने की कोशिश में है और इस दौरान लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी केन मुख्य भूमिका में होंगे। देश की खबरों के बारे में मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण पूर्व में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह कर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर कुछ जगहों में ज्यादा बारिश हो सकती है। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान चंद्रपाटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगुनों में। वैसे कल सूर्योदय सुबह 6:45 बजे के लिए निर्धारित है।

इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक और नीतू शाह का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। मोंटेश्योलेन सुरीनाम में, मोंटेश्योलेन सुरीनाम में 70 साल की 70 years old की श्रीमती जसवंती समन, श्रीमती जसवंती समन पैदाइशी नाम जगन्नाथ, पैदाइशी नाम जगन्नाथ और जो प्रेमिला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री कुमार समन के घर मोंटेश्योलेन सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 गांधी रोड एनएस फ्लोहोमी, गांधी रोड एनएस फ्लोहोमी 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंदिरा बंगारीगाडू, श्रीमती इंदिरा बंगारीगाडू पैदाइशी नाम रोजबेरिया नायको, पैदाइशी नाम रोजबेरिया नायको और जो रेणु का नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके घर गांधी रोड एन एस फ्लोहोम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2:30 PM।

0: Grøderud, Grand Rivière, Sud-Esmir. Grøderud, Grand Rivière, Sud-Esmir. 67 yaşındaki, 67 years old ki, Sri Bidyanan Ramesar, Sri Bidyanan Ramesar, जो मनन नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे, कल दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री मानव रामेसर के घर Grøderud, Grand Rivière, Sud-Esmir से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट नून. Monsalmant Aubonne Bambumi, Monsalmant Aubonne Bambumi, 76 साल के, 76 years old के, श्री हेमराज मंगा, श्री हेमराज मंगा, जो कृष्ण नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उनके घर Monsalmant Aubonne Bambumi से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटान साइन पिया बांबू की श्मशान भूमि दी जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Ça grand moment la fin arrivé. Grand final débat climat saison 4. Après plusieurs semaines de débats passionnés et palpitants, fin arrive l'heure pour connaître qui collait pour vainquer débat climat saison 4. Débat Climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration de Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 27 juin à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBC SAT.
3: RM2 Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हाय, क्या बात है, ये अच्छा किया कि हम आ गई, वरना आप ऐसे ही बैठे बैठे अकेले पड़ जाते। लेकिन हमने कहा ना कि जब भी आप खुद को अकेले महसूस करते हैं तब आप बस आंखें बंद कीजिए और एक मिनट के लिए ये सोचिए कि रेडियो मस्ती आपके साथ है। और कभी भी गुड म्यूज़िक को एंजॉय करना पड़े तो आप हमेशा हमें याद करिएगा। चलिए, यहाँ पर 2400 घंटे आपके साथ हैं, इतनी गारंटी और इतना प्रॉमिस तो ज़रूर करते हैं। मेरे बाद ऑफ कोर्स विकास ऑल सेट है टू गिव यू द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आजकल फुटबॉल की दुनिया में तो बहुत कुछ ही हो रहा है, तो चलिए एक्साइटमेंट इज ऑन। एंड चलिए, ये 7 बजे के बाद ऑफ कोर्स आप लोगों से मुलाकात करने आएंगे, तो वो आपको और भी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स देते रहेंगे अलोंग बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। तो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM। एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। एंड ये अगला गाना जाएगा टू ईच एंड एवरी वन। बस गाने में वो अजनबी कहा गया है, लेकिन आप तो बिल्कुल अजनबी नहीं है, आप तो हमारे अपने हैं, और इसीलिए बार बार यू कीप चूजिंग अस, एंड दिल से इसके लिए आपको शुक्रिया।
0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

Well, we have this beautiful one taken up from the movie Chahat, and चलिए यहाँ पर 6 बजे को किसी का मैसेज आया था, आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर माई होल फैमिली ऑन वे फॉर वेडिंग विद मासी विधि एंड नानी. तो चलिए आपको बहुत बहुत सारा प्यार, एंड चलिए टू ऑल दोज जो इस वीकेंड को शादी के बंधन में बनने जा रही हैं, आपको हैप्पी मैरिड लाइफ.

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Masti.
2: Well, of course, आज शाम को भी it's time to chillax and खूबसूरत गीतों का कारवां जारी रहेंगे. So, वैसे ही आप एंजॉय करते ही रहिएगा. 6:51 हो चुके हैं. दिव्या का साथ है till 7 PM in your music टकटका टक.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल फ्रेंड्स, चलिए इसी खूबसूरत गीत के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी बात ऑफ कोर्स विकास ऑल सेट है टू गिव यू द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। तो चलिए यहाँ पर हमारी और आपकी मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: रात के 3:28 यू आर ट्यून टू रेडियो मस्ती में हूँ विकास रामधनी और आपके साथ हूँ रात के 9 तक यानी 7 to 9 सैटरडे नाइट और इट्स स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक टाइम आपके अपने झंकार बीच में सो माइसेल्फ इन द मिक्स और लेकर आया हूँ आपके लिए ढेर सारी खबरें हमेशा की तरह स्पोर्ट्स जगत से और ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप न्यूज़ इन 2 घंटों के अंदर जिसका लास्ट 32 राउंड

सेकेंड राउंड जो है नॉकआउट स्टेज इसी सोमवार मंडे से शुरू हो रहा है। सो जो आखिरी मैच आपको पता है आज सुबह नहीं बल्कि कल सुबह 1 बजे से ही अभी 2 मैच खेले जाएंगे, फिर 3:30 बजे भी संडे की 3:30 बजे और संडे सुबह 6 बजे भी कई मैच रखे गए हैं। सो इतने सारे फुटबॉल मैचेस और खबरें रेडियो मस्ती पर आपको देंगे आज, खुलकर हम बात करेंगे और आप भी मैसेज भेजते रहिए, आप भी शामिल हो जाइए। मेरी आवाज़ ख़राब है पर आपके अच्छे अच्छे मैसेज आते रहना चाहिए ऑन 5499-1294-5499-1294 पे। अगेन 5499-1294, लेट्स शेयर सम फंटास्टिक स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑन रेडियो मस्ती।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: समूचे स्पोर्ट्स जगत का सारा ध्यान अभी वर्ल्ड कप 2026 पर है, खासतौर पे यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में, इन तीन देशों में ये वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है। और मैच पे मैच, आज रात तक कोई भी मैच नहीं है, बल्कि कल संडे की सुबह 1 बजे, तड़के 1 बजे मैच खेले जाएंगे। आपको हम पहले फिक्स्चर्स बता देते हैं। सो कल संडे की सुबह 1 बजे आफ्टर मिडनाइट, जो 1 बजे आता है तड़के, उसमें क्रोएशिया वर्सेस गाना एंड पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। सो ये दो मैच खेले जाएंगे आज रात 12 बजे के बाद, जो 1 बजे आता है पहली सुबह वाली, और उसमें क्रोएशिया वर्सेस गाना एंड पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से। इस ग्रुप में भी काफ़ी कुछ अभी होना बाकी, हालांकि इंग्लैंड एटलीस्ट वो बेस्ट ऑफ 8 में आ ही जाएगी, क्योंकि कल के जो मैच खेले गए उन सबको लेकर इंग्लैंड इज देयर, लेकिन जीतकर इंग्लैंड पहले स्थान पर भी आ सकता है। एंड क्रोएशिया गाना सबके सब इन दोनों में भी अभी क्वालिफिकेशन अभी भी बाकी है। सो बहुत कुछ होना, देखना सुनना बाकी है। एंड वी हैव सम अदर मैचेस आल्सो, आपको देंगे हम समय समय पर खबरें। बता दें आपको कि संडे की सुबह हमने बताया कि फर्स्ट राउंड के आखिरी मैच खेले जाएंगे, उसके बाद मंडे से, इसी मंडे से जो है नॉकआउट स्टेज शुरू। सो आप भी शामिल हो जाइए। एंड यस, उसके बाद कल सुबह इस 1 बजे के इन दो मैचों के बाद विल बी हैविंग 3:30 AM 3:30 AM ग्रुप के अंतर्गत दो मैच खेले जाएंगे, कोलंबिया वर्सेस पोर्चुगल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से होगा। फिर कल सुबह 6 बजे भी दो मैच आप फिर देख पाएंगे, 6 बजे ही ग्रुप जे में अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया और जॉर्डन का मुकाबला अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना लियो मेसी का अर्जेंटीना खेलेगा कैबो वर्दे के विरुद्ध। बात करेंगे अभी के वर्दे के बारे में, जिसने इतिहास रचा, अफ्रीका, अफ्रीकन फुटबॉल का नया चेहरा, नई उम्मीद।
2: RM2 Radio Musti
1: Hit Music Only।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunga Beats.
1: RM2, Radio Musty.
2: FIFA World Cup 2026 के जो आखिरी मैच है इस फर्स्ट राउंड के आखिरी मैच कल सुबह खेले जाएंगे और मंडे से इसी सोमवार से नॉकआउट स्टेज शुरू. आपको पता है कि 48 देश 48 कंट्रीज भाग ले रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम और कुल मिलाकर 12 ग्रुप्स हैं. 12 ग्रुपों में से दो दो टीमें ऑटोमेटिकली क्वालिफाई एंड कुल मिलाकर 24 हुए 24 प्लस 8 बेस्ट आउट ऑफ जो थर्ड प्लेस हैं तब जाकर 24 प्लस 8 बनते हैं 32. लास्ट 32 राउंड में कौन कौन सी टीमें जाएंगे लगभग सब कुछ तय है. बस कल सुबह के जो मैच हैं उनको देखकर अभी भी दो तीन ग्रुपों में तीसरा मैच खेलना बाकी है. सो वी हैव सम आइडियाज. बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत रात 9 तक ऑन वर्ल्ड कप फिक्स्चर्स, वर्ल्ड कप के जो गोल्स बने और जो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं. सो आज सुबह ही जो मैच खेले गए एक से बढ़कर एक मैच थे एंड कमाल के मैच थे आज सुबह. खासतौर पे इजिप्ट और ईरान के बीच जो मैच ड्रो गया 1-1, दैट वाज अ फैंटास्टिक मुकाबला. अंत तक ईरान जीत भी सकता था. द लास्ट 10-15 मिनट्स वर देयर्स. ईरान ने खूब कोशिश की और आई बिलीव वे थर्ड प्लेस में आ सकते हैं और न्यूजीलैंड की हार हुई. बेल्जियम ने उसे 5-1 से परास्त किया. लैंड्रो थ्रोसा का एक डबल, केविन डेब्रून, रोमेलू लुकाकू एंड अलेक्सी सेलेमेकर्स ऑन टारगेट फॉर बेल्जियम. सो बेल्जियम टॉप पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पर इजिप्ट और ईरान थर्ड प्लेस आ गया है. वो खेल भी सकता है बट वी हैव टू वेट अंटिल द लास्ट मैचेस. आज कल सुबह जो मैच खेले जाएंगे. सो ये ग्रुप बड़ा ही तगड़ा था. उससे पहले जापान और स्वीडन के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1. जापान क्वालिफाइज. नेदरलैंड्स ने इसमें चुनिजा को 3-1 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल किया. स्वीडन भी थर्ड पोजीशन पर, थर्ड प्लेस पर वो टॉप 8 में आ जाएगा. सो स्वीडन इट अपीयर्स वो खेलेगा

0: फ्रांस के विरुद्ध बात करेंगे इन सब पर. और पराग्वे 0 ऑस्ट्रेलिया 0 ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइज, हालांकि यूएसए की हार हुई थी 3-2 से टर्की के विरुद्ध, फिर भी यूएसए टॉप पोजीशन पर. यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया इन, टर्की आउट. पराग्वे भी बेस्ट ऑफ 8 में आ जाना चाहिए. सो इन सब पर बात करेंगे. बता दें कि आज कोई भी, आज रात कोई भी मैच नहीं है, लेकिन कल सुबह संडे की सुबह 1 बजे, तड़के 1 बजे, क्रोएशिया वर्सेस गाना ग्रुप एल में पनामा का मुकाबला होगा इंग्लैंड से. फिर 3:30 बजे कोलंबिया वर्सेस पोर्चुगल ग्रुप के में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का मुकाबला उज्बेकिस्तान से. और कल सुबह 6 बजे अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया, जोर्डन का मुकाबला अर्जेंटीना से. 5499-1294-5499-1294 पे आप भी अपना मैसेज शेयर कीजिए.
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झलकार बीट्स.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: Ladies and gentlemen, you are listening to
3: Jungle Beats.
1: RM2, Radio Musti.
4: Salbatskar sent this meter. 4 सेकंड यू आर ट्यून्ड टू RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूं विकास और हूं आपके साथ रात के 9 तक. यह झंकार बीट्स और झंकार बीट्स के सेकंड आवर में फ्रॉम 8 टू 9 हम बात करेंगे कुछ और खबरों को लेकर, यानी कि ट्रांसफर बाजार में क्या क्या चल रहा है. एंड क्रिकेट में भी इंडिया की हार हुई अगेंस्ट आयरलैंड, उस पर बात करेंगे. और ट्रांसफर बाजार में बहुत कुछ हो रहा है, खासतौर पर इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीमों को लेकर. वी हैव अनदर प्रोबेबली ब्रिटिश ट्रांसफर रिकॉर्ड जो तोड़ दिया गया है, लेकिन सिटीज अजामत की ऐसा कुछ नहीं है. बात करेंगे इस पर भी. लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी आदि टीमें जो है, चेल्सी इंक्लूडिंग, सबके सब अभी वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन पर उनकी निगाहें गड़ी हुई हैं. कुछ मेडिकल भी पूरा होने जा रहे हैं और कुछ साइनिंग भी पूरी हो रही है. सो वहां से जब लौटेंगे 19 जुलाई तक बहुत सारे ट्रांसफर संपन्न कर लिए होंगे. सब पर बात करेंगे 8 टू 9. फिलहाल वर्ल्ड कप में जो अब तक हुआ है, बता दें कि ग्रुप ए में मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका हैव क्वालिफाइड, दोनों टीमें क्वालिफाइड हो गई हैं. साउथ कोरिया वो भी एज इट स्टैंड्स, ऐसा मालूम पड़ता है कि साउथ कोरिया का मुकाबला होगा बेल्जियम से. मेक्सिको खेलेगा इक्वाडो के विरुद्ध. साउथ अफ्रीका का मुकाबला कनाडा से होगा. ये मैच खेला जाएगा 28 जून को ही, कल ही शायद ये मैच खेला जाए. और ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड और कनाडा क्वालिफाइड हो गए हैं ऑटोमेटिकली. एंड बोस्निया आज थर्ड बेस्ट टीम, बेस्ट ऑफ एट में. स्विट्जरलैंड का मुकाबला होगा ईरान से, ऐसा लगता है. कनाडा विल प्ले साउथ अफ्रीका ऑन 28 जून. और बोस्निया एज ए गुविना यूएसए के विरुद्ध खेल सक्ता है. ग्रुप सी में ब्राजील और मोरक्को हैव क्वालिफाइड. ब्राजील का मुकाबला जापान से होगा 29 जून. मोरक्को विल प्ले नेदरलैंड्स ऑन 30 जून. 30 जून को ये खेला जाएगा. सो इट्स ए जबरदस्त मुकाबला, मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड्स. अब तक मोरक्को जो है, याद रहे कि लास्ट वर्ल्ड कप में मोरक्को जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंचा था. और इस फिलहाल इस ग्रुप में, इस वर्तमान वर्ल्ड कप में भी उसका परफॉर्मेंस एकदम काबिल तारीफ है. सो वो खेलेगा नेक्स्ट नॉकआउट स्टेज में अगेंस्ट नेदरलैंड्स. ग्रुप डी में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड हैं. एंड यूएसए विल प्ले बोस्निया एज़ेगोविना. ऑस्ट्रेलिया का

मुकाबला इजिप्ट से एंड पराग्वे भी जिसने कल अपना मैच ड्रॉ किया पराग्वे खेलेगा एज थर्ड बेस्ट टीम अगेंस्ट जर्मनी सो इतना सब कुछ बाद में बात करेंगे बाकी सब ग्रुपों के बारे में जर्मनी आइवरी कोस्ट सब क्वालिफाइड हैं इक्वाडोर भी प्रोबेबली दे विल प्ले मेक्सिको सुनते रहिए

सो जस्ट टू रिकैपिचुलेट आज रात कोई भी मैच नहीं है रात 12 बजे तक मॉरिशन टाइम अनुसार लेकिन कल संडे की सुबह 1 बजे 12 बजे के बाद जो 1 बजे आता है उसमें दो दो मैच खेले जाएंगे किसके 12 बजेंगे उस समय ग्रुप एल में क्रोएशिया वर्सेस गाना और पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से होगा इंग्लैंड का ये तीसरा मैच सो इंग्लैंड की टीम जो है कम से कम बेस्ट ऑफ 8 में तो वो आ ही जाएगी और जीत की स्थिति में ऑफ कोर्स टॉप कर जाएंगे लेकिन गाना और क्रोएशिया भी क्वालिफाइड इन वे हो जाएंगे और इनमें से कम एक टीम आगे बढ़ पाएगी और तीसरे स्थान के लिए भी एक टीम आ सकती है सो वी हैव क्रोएशिया वर्सेस गाना इन पनामा इंग्लैंड कल सुबह 1 बजे उसके बाद 3:30 बजे कल ही संडे की सुबह 3:30 बजे ग्रुप के दो मैच कोलंबिया वर्सेस पोर्चुगल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का मुकाबला होगा उज़्बेकिस्तान से और संडे की सुबह 6 बजे ही कल सुबह 6 बजे जब आप जागेंगे तो और दो मैच खेले जा रहे होंगे ग्रुप जे में अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया तो जोर्डन का मुकाबला अर्जेंटीना से है बता दें कि अर्जेंटीना का मुकाबला राउंड ऑफ 32 में होगा केप वर्दे से केप वर्दे ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है 3 मैचों में 3 ड्रॉ और कल भी उन्होंने मैच ड्रॉ किया जब यूरुग्वे हार गया तब केप वर्दे ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो गया सो हैट्स ऑफ टू केप वर्दे केवल 500,000 की जनसंख्या 500,000 पीपल देयर और एक समय मॉरिशस के साथ भी इसका मुकाबला था 2-0 से शायद उसकी जीत हुई थी मॉरिशस में इसी साल या गत साल की ये बात है सो कैन वी इमेजिन कि क्लब एम भी वहाँ पर क्या हो सकता था बस सोच सकते हैं सपना देखना मना नहीं है बस सपना पूरा करने की ताकत होनी चाहिए सो इट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 हम बात कर रहे थे ग्रुप डी की यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड पराग्वे विल प्ले जर्मनी ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट क्वालिफाइड हो गए हैं इक्वाडोर ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया इक्वाडोर ने जर्मनी को हराकर शायद तीसरा स्थान ले लिया है बेस्ट ऑफ 8 में वो आ गया है उसका मुकाबला मेक्सिको से होगा विद 4 पॉइंट ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स और जापान ऑटोमेटिकली क्वालिफाई स्वीडन तीसरे स्थान पर सो नेदरलैंड का मुकाबला मोरक्को से ये सबसे धुआंधार मुकाबला साबित हो रहा है और जापान खेलेगा ब्राजील के विरुद्ध दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ए की मैच जापान वर्सेस ब्राजील जबकि स्वीडन विल प्ले फ्रांस

0: on 30 June. Group G में Belgium और Egypt qualify हो गए हैं. Belgium का मुकाबला South Korea से, Egypt खेलेगा Australia के विरुद्ध. And as it stands, Iran will play Switzerland. जबकि Group H में Spain और Cape Verde qualify हो गए हैं. Spain will play Austria. Cape Verde का मुकाबला अर्जेंटीना से, Cape Verde versus अर्जेंटीना 3 जुलाई की रात ये मैच खेला जाएगा. ग्रुप आई में फ्रांस और नॉर्वे क्वालिफाई हो गए हैं. फ्रांस का मुकाबला होगा स्वीडन से, नॉर्वे खेलेगा आइवरी कोस्ट के विरुद्ध. एंड एज इट स्टैंड्स, सेनेगल विल प्ले इंग्लैंड. आज के मैचों को देखकर शायद यहां पर कुछ बदलाव आ सकते हैं. ग्रुप जे में अभी तक 2 मैच खेले गए हैं, ग्रुप के में भी 2 मैच और ग्रुप एल में भी 2 मैच. सो थर्ड प्लेस रैंकिंग में अब तक ऑन टॉप पोजिशन वी हैव स्वीडन, इक्वाडोर, बोस्निया हर्जेगोविना, पैराग्वे, सेनेगल, ईरान, क्रोएशिया और साउथ कोरिया. लेकिन ग्रुप एल, ग्रुप के और ग्रुप जे के मैच, तीसरे मैच अभी बाकी है.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: अब तक कुछ नहीं किया है और इसमें कोई राज भी नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी मैचेस ऑन एमबीसी प्ले, जहां पर आप न्यू वर्ल्ड यानी चैनल 1 और न्यू वर्ल्ड चैनल 4 पर सारे मैच लाइव देख सकते हैं। एंड दिस अप्लाइज टू एमबीसी प्ले ब्रॉडकास्ट मैचेस। इसमें रात के ठीक 8 बजे हैं।
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
3: Radio Musti.

0: वर्ल्ड कप के टाइम जोन के कारण सो ही नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम आपके हैं कौन?
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झलकार बीट्स.
0: वेलकम वेलकम, वापस लौट आइए. 8 to 9 सेकेंड आवर इज ऑन झंकार बीट्स हमारे साथ. वर्ल्ड कप न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, फुटबॉल न्यूज, क्रिकेट न्यूज, ऑल इन वन एंड वन फॉर ऑल.

0: रात कर बजकर 9 मिनट और 50 सेकंड नमस्कार आदाब एंड प्रणाम आपको एक बार फिर दिस इज झंकार बीट्स आपका अपना प्रोग्राम हर शनिवार की रात 7 से 9 तक
1: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर लिसनिंग टू झंकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
0: Beating everyone, every sport. World Cup 2026 is on. First round लगभग समाप्त होने जा रहा है. So कल सुबह तड़के एक बजे, संडे की सुबह एक बजे, after midnight, England खेलेगा पनामा के विरुद्ध. So और 3:30 बजे भी दो मैच खेले जाएंगे. 3:30 AM and then 6 AM संडे के लिए. Save the time and the date. संडे के लिए आखिरी मुकाबले होंगे इस first round के. Then as from Monday morning, knockout stage शुरू. Canada is hosting this World Cup साथ में USA और Mexico और on 5499-1294-5499-1294 पे we have a message from Canada from Jani hi good to hear from you अच्छा लगा वहाँ से live and direct सुन रहे हैं and listening to the program from Toronto I wish I could send the World Cup magical vibes from Canada to all our listeners हाँ समझ सकते हैं बिकॉज जब लाइव होते हैं और आप कनाडा में हैं एंड यू आर लिविंग ए वंडरफुल एक्सपीरियंस और आपको बहुत बहुत बधाई जानिए इट इज़ वंडरफुल टू सी द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स सारी जो संस्कृतियाँ हैं सारे लोग जो रहते हैं और ख़ास तौर पे जब बाहर रहते हैं तो एक साथ मिलकर मस्ती करते हैं और सेलिब्रेटिंग अराउंड फुटबॉल मैचेस दे आर इन कनाडा विच इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री कनाडा जो है क्वालिफाई हो गया है जानिए एंड गुड आपके सभी फैमिली फ्रेंड्स को भी आपकी ओर से हाई हेलो एंड कनाडा नेक्स्ट प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑन 28 जून सो कल रात को ये मैच खेला जाएगा एंड आई थिंक इट्स से प्रेनाबल ना कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका कोई बड़ी टीम नहीं है लेकिन कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम इतिहास रचने जा रहा है और होपफुली दे विल विन थैंक यू जानी जुड़ने के लिए और चुनने के लिए ऑन 5499-1294 कमिंग नेक्स्ट सम ट्रांसफर न्यूज फुटबॉल बाजार से यूरोप में और खासतौर पर इंग्लैंड में क्या क्या चल रहा है सुनते रहिए
3: Play karo, smile karo Bollywood ke saath chill karo Dil se Bollywood Radio Mustang

0: इट्स अ फैक्ट कि इंटरनेट ने सारी दूरियां मिटा दी है, आप वहां हैं और हम यहां, फिर भी मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, टेक्स्ट कर पा रहे हैं इन रियल टाइम। डे डे कनाडा, जहां इस समय गर्मी का मौसम है, इसीलिए वर्ल्ड कप में हाइड्रेशन टाइम भी दिया जा रहा है, और यहां मॉरिशस में ठंड का मौसम है और फ्लू फीवर बुखार भी है, इसलिए बच के रहना और चुपके चुपके फुटबॉल मैचेस भी देखते रहना।
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झलकार बीट्स।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junker Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: चलिए बात करते हैं अब वर्ल्ड कप के बाहर कुछ और खबरों के बारे में एंड क्रिकेट न्यूज़ T20 मैच इंटरनेशनल मैच बिटवीन आयरलैंड एंड इंडिया और बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि भारतीय टीम की हार हुई कल अगेंस्ट ए टीम लाइक आयरलैंड जो अभी वर्ल्ड स्टेज पर कोई बड़ी टीम नहीं है लेकिन हाँ होता है ऐसा भी आयरलैंड वन बाय 34 रन्स 34 रनों से आयरलैंड ये मैच जीत गया T20 मैच इंडिया ने अपनी पारी में जवाब के तौर पर केवल 148 रन ही इंडिया बना पाई एंड ऑल आउट इन 18.5 ओवर इससे पहले आयरलैंड ने 182 रन बनाए एंड इंडियन टीम जो है विदाउट ये सूर्यवंशी जो है उसके बिना ये मैच था उसको खेलना था उसका बर्थडे था लेकिन ऐसा नहीं हुआ सो और इंडियन टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 49 रन बनाए संजू सैमसन केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए

और उसे आउट किया एक इंडियन खिलाड़ी ने ही, जय मुंद्रा ने, जो 29 साल का है जय मुंद्रा, 2021 में आयरलैंड गया था, वहां पर स्थापित हो गया है और उसने ही 5 रनों के बाद ही संजू सैमसन को आउट किया एंड आयरलैंड वन द मैच बाय 34 रन। शायद उनके लिए इट्स हिस्ट्री,

0: करना पड़ता है. सो क्रिकेट में इतना सब कुछ हो रहा है और T20 मैच जारी है. लेट मी सी इसके बाद कौन सा मैच खेला जाएगा. कल शायद कल संडे को इंडिया का मुकाबला एक और मैच में होगा, इंडिया वर्सेस आयरलैंड. कल एक दूसरा मैच खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब स्टोमंड बेलफास्ट में. सो T20 मैच जारी है इन दो देशों के बीच.
1: झंकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती.
1: झंकार बीट्स
0: वेलकम टू द जंगल. फीफा वर्ल्ड कप में बात करेंगे अभी ट्रांसफर बाजार को लेकर, जहां पर खलबली मची हुई है.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: अच्छा फॉर्मूला वन मोटर सिंह चैंपियनशिप की जो कल संडे को ये रेस लगने वाली है ऑस्ट्रियन ग्रां प्री रेस कल लगेगी ऑफ द प्रैक्टिकली 2 वीक्स और बता दें कि अभी जनरल स्टैंडिंग में अभी भी किमी एंटोनेली पहले स्थान पर है विद 156 अंकों के साथ मर्सिडीज का किमी एंटोनेली सेकंड पोजिशन पे वी हैव लेविस हैमिल्टन फ्रॉम फेरारी 115 अंक यानी कि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है और तीसरे स्थान पर है मर्सिडीज का जॉर्ज रसेल कल संडे की सुबह ये रेस ग्रां प्री ऑस्ट्रिया में लगने वाली है और आज जो रिजल्ट है लेटेस्ट जो है इसमें लेट मी चेक आउट द लेटेस्ट जॉर्ज रसेल क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाइंग राउंड में पहले स्थान पर आया है सो रसेल विद हिज मर्सिडीज शार्ल लेक्लेयर फेरारी पर सेकंड पोजिशन पर लेविस हैमिल्टन ने तीसरा स्थान लिया और किमी एंटोनेली चौथे स्थान पर सो देयर इज स्टिल रेस अभी लगने वाली है इतना सब कुछ फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप को लेकर एंड क्रिकेट में हमने बताया कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड कल ये मैच खेला जाएगा और ट्रांसफर बाजार में बहुत कुछ हो रहा है एंड विद द लाइक ऑफ एलियट एंडरसन जो सबसे कीमती खिलाड़ी बन गया है ब्रिटिश ट्रांसफर रिकॉर्ड अनदर वन 116 की बात तो हुई है फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट टू मैनचेस्टर सिटी पर सिटी इज अडामेंट कि ये 130

0: तक नहीं है। खबरों के मुताबिक ये ट्रांसफर 130 मिलियन पाउंड तक जा रहा है, लेकिन उसका कहना है कि 116 पर ही ये तय हुआ है। आज द बिगेस्ट साइनिंग फॉर द टाइम बीइंग, 5-year डील पर साइनिंग हो गई है। 3 लाख पाउंड, 300,000 पाउंड अ वीक फॉर एलियट एंडरसन फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट टू मैनचेस्टर सिटी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी कई सारे साइनिंग अभी की जा रही है। बात करेंगे मैथ्यूस फर्नांडिस फ्रॉम West Ham United to Manchester United, is it true? या फिर ऐसा मालूम पड़ता है कि the Red Devils ने अटलांटा के Brazilian midfielder Ederson Silva के साथ भी एक समझौता तय कर लिया है। Ederson Silva फिलहाल ब्राजील के साथ World Cup में शामिल है। Michael Carrick का ये पहला साइनिंग हो सकता है, इसलिए सुनते रहिए।
1: RM2 Radio Musti
2: Chankar Beats.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunka Beats.
2: RM2, Radio Musty.
3: सो लास्ट ऑफ द रोड आखिर में आ गए हैं. इट्स ऑलरेडी 8:54 और 40 सेकंड. ये आखिरी माइक है ना, आखिरी गाना इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले. बता दें कि आज के जो मैच है, एक बार फिर आपको बता दें, आज कल संडे की ये 12 बजे के बाद जो 1 बजे होने वाला है, उसमें 2 मैच खेले जाएंगे. इंग्लैंड के ग्रुप में क्रोएशिया वर्सेज गाना एंड पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से. यस, सो पनामा वर्सेस इंग्लैंड, क्रोएशिया वर्सेस गाना कल सुबह 1 बजे. उसके बाद 3:30 बजे ग्रुप के में कोलंबिया खेलेगा पोर्चुगल के विरुद्ध एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वर्सेस उज़्बेकिस्तान.

0: एंड देन कल सुबह 6 बजे अगेन टू मैचेस ग्रुप जे में अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया एंड जॉर्डन का मुकाबला होगा अर्जेंटीना से. बता दें कि लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना अब खेलेगा लास्ट 32 राउंड में केप वर्दे के विरुद्ध. सो हियर वी गो. कुछ और एक दो खबरें रह गई हैं. ट्रांसफर बाजार से बात कर रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में. एडिनसन सिल्वा उनके टारगेट में, उनकी निगाहों में आ गया है. रियल मैड्रिड का फ्रेंच मिडफील्डर ओरेलियन चुआमेनी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के रडार में है ऐसा मालूम पड़ता है. जबकि मार्कस राशफोर्ड की स्थिति अभी भी नाजुक है. हालांकि एफसी बार्सिलोना ने उसे रिलीज कर लिया है और वो कहीं और जाना नहीं चाहता, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उसे रखना नहीं चाहता है ऐसा लग रहा है. सो राशफोर्ड जाना नहीं चाहता है टोटेनम हॉटस्पर में, हु वांट्स टू साइन हिम. द एथलेटिक के मुताबिक 29 ईयर ओल्ड राशफोर्ड के लिए 40 मिलियन पाउंड का रिलीज क्लोज अभी भी है. एंड ब्रूनो गिमारेज भी न्यूकासल यूनाइटेड को छोड़कर जा सकता है. आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के कान खड़े हो गए हैं. खबर है कि आर्सेनल 80 मिलियन पाउंड का एक इम्प्रूव्ड प्रस्ताव तैयार कर रहा है ब्रूनो गिमारेस के लिए. एंड ऑफ कोर्स आर्सेनल एस्टन विला के मोगन रॉजर्स को भी अपना टॉप टारगेट बना रखा है. देखते हैं आगे आगे क्या होता है. 19 जुलाई तक वर्ल्ड कप जब समाप्त होगा तब उसके बाद ढेर सारे खिलाड़ियों की नीलामी, आना जाना, ये पैसा बोलेगा, बोलता है, बोलता रहेगा. और अभी के लिए घड़ी की सुइयां बोल रही हैं कि समय हो गया है. इसलिए थैंक यू जुड़ने के लिए और चुनने के लिए. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अगले शनिवार की रात 7 से 9 के बीच विद मी विकास रामधनी साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट. एंड कल सुबह भूलेगा नहीं, एवरी सैटरडे मॉर्निंग 7:30 AM एंड संडे मॉर्निंग 7:30 ऑन Radio Musti with lots of latest sports news, views and reviews. Tab tak ke liye, namaskar, shubh ratri, sabal khair, phir milenge, bye bye.
1: RM2 Radio Musti. Jhankar beats.
2: RM2 Radio Musti.
1: Jhankar beats.

हे बॉलीवुड का मैजिक कुछ अलग ही होता है। हर बीट एक मूड सेट कर देता है और अगर आप इस वक्त उसी मूड में हैं, गाड़ी में, किचन में, घर पर, लिविंग रूम में, व्हाटएवर डांस कर रहे हैं, तो वेलकम टू द क्लब। यस,

क्या जबरदस्त सैटरडे नाइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल से शुक्रिया साथ देने के लिए। याद रखिए, लाइव की प्लेलिस्ट हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ बजती रहती है। RM2 आपके साथ हमेशा 24/7।

Right, ladies and gentlemen, इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, but music continues, the mastery continues, क्योंकि अभी Saturday बाकी है, picture बाकी है, so keep on rocking and rolling, आपके साथ RM2 हमेशा।

0: हम इंसान हमेशा किसी और की जिंदगी चुरा के जीना चाहते हैं, ये फितरत है हमारी, और मैं तो हुई चोर।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे। लड़की बड़ी अनजानी
1: है। रेडियो मस्ती ऑल द वे।
2: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।